हे क्रंगना सौजिन सावलम सरांग न पुमाई तुवलम दम थांग जिंग न केवा धोक पा सिंगो मान पान भरी बलम दम मधुदा केगे लोकता भुमदी मथा सैरेन भुमदी मता भवनु अहिंगे नोंगलेल नों भाई बा सिला सादी खुनौबी उधुम धुमबी मचादी खुनौबी दुना मपुगे सिंधा काई बतारी दना सिला सादी खुनौबी दुना यो इमया ये ताऊद लंगान बमागे मशीक मंगाल हुन तूलल बमतम दुना सिला न हुमनो न याई भाई न यका लाउ न खुंगे हुमनो न याई ताखी गदरा सेला न उमन खुंगे सेला की खुन तो काय गदरा घल दुना लोग ताके धुम धुम भी सादी खुनो भी ये दुना मबुधाऊ मेरांग थांग जिंग कुरे लाई मचानो भी म कुरे ले म पान भविन ले म मरम गई ओली रंगवा सिंगो मागी मरम खई इनु मंगाली वंगाली दनवा।

0: बदलो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

ताबिरे हाउबम निवारानी देवी की खुंजल दा हिदामी बो चौबना सैरेंग बा मतमिशे आकाशवाणी इम्फाल हौचिक लांथोक चरी नहारोल की खुंजल।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: agad pa fong dukjeri.
1: बदलो बदलो आदत बदलो
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या
1: बदलो बदलो आदत बदलो अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें आरबीआई कहता है जानकार बनिए सतर्क रहिए
0: अदोंगिदमक तोंगान तोंगान बा थोरम कया संदोक तुना तहन जरी बसी आकाशवाणी इम्फाल की एफएम संगाई चैनल दगिनी हौजिक पुंगफा मसिदा पुदुना लक्चरी सैसक पमगी शैदा अहन थेम हेमारानी देवी सैसक पसिना सकपा इशै सिंह मथंग मथंग लानथोक चरी तामिनसी

0: ꯇꯥꯍꯟꯖꯔꯤꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁꯩꯁꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯏꯁꯩꯗ ꯑꯍꯟꯊꯦꯝ ꯍꯦꯃꯔꯥꯅꯤ ꯗꯦꯕꯤꯅ ꯁꯩꯁꯛꯂꯤꯕ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯇꯥꯍꯟꯖꯕ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯤ. ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯌꯨꯛꯀꯤ ꯄꯨꯡ 10:00 ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ.
1: ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ. ꯑꯣꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯋꯥꯀꯤꯡ ꯖꯔꯅꯦꯂꯤꯁ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯑꯝꯖꯨ ꯂꯤꯡꯈꯠꯈꯤꯕꯒꯤ 52 ꯁꯨꯕ ꯀꯨꯝꯑꯣꯟ ꯊꯧꯔꯝ ꯉꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯅꯤ. ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯃꯨꯈ꯭ꯌ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯈꯦꯝꯆꯥꯟ, ꯉꯥꯟ, ꯎꯄ ꯃꯨꯈ꯭ꯌ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯂꯣꯁꯤ ꯗꯤꯈꯣ, ꯒ꯭ꯔꯤꯍ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯒꯣꯕꯤꯟ ꯗꯥꯁ ꯀꯣꯟꯊꯧꯖꯝ, MLA ꯈꯨꯃꯨꯛꯆꯝ ꯖꯣꯏꯀꯤꯁꯟ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯒꯅꯤ. ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀ꯭ꯔꯤꯀꯦꯠ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯂꯤꯡꯈꯠꯈꯤꯕꯒꯤ 52 ꯁꯨꯕ ꯀꯨꯝꯑꯣꯟ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯍꯨꯝ ꯁꯨꯕ MN CA ꯑꯦꯋꯥꯔꯗ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯦꯂꯦꯁ ꯀꯝꯄꯥꯎꯟ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯂꯩꯕ MDS ꯑꯣꯗꯤꯇꯣꯔꯤꯌꯝꯗ ꯉꯁꯤ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯅꯤ. ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯦꯡꯅꯧꯄꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯄꯤꯂꯔ 46ꯀꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯀꯥꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯊꯤꯕꯨꯝꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯕꯗ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯥꯛꯀꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃ ꯐꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ. ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯀꯃꯥꯟꯗꯣ 92 ꯁꯨꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ 96 ꯁꯨꯕ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯁꯀꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯃꯅ KYKL ꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃ ꯍꯤꯌꯥꯡꯂꯝ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯕ ꯍꯤꯌꯥꯡꯂꯝ ꯋꯥꯔꯈꯣꯡ ꯃꯅꯨꯡꯗꯒꯤ ꯐꯥꯈꯤ. ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯍꯨꯝꯅꯤ ꯆꯠꯊꯒꯗꯕ ꯔꯥꯏꯖ ꯊꯥꯛꯀꯤ ꯊꯥꯡ ꯇꯥ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥꯒꯤ ꯀꯩꯂꯥꯁ ꯁꯍꯔꯗ ꯂꯩꯕ ꯅꯥꯀꯣꯇꯤ ꯀꯂꯥꯀ꯭ꯁꯦꯇ꯭ꯔꯗ ꯉꯔꯥꯡꯗꯒꯤ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦ. ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯖꯤꯂꯥ 9ꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏ 135ꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯔꯤ. ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯣꯖꯣꯟ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯉꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤ. ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯕꯨ ꯉꯥꯛ ꯁꯦꯟꯗꯨꯅ ꯊꯝꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯣꯖꯣꯟ ꯂꯌꯥꯔꯅ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯍꯟꯅꯕ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯅꯤ. ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠꯇ ꯂꯧꯎꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯧꯃꯤꯒꯤ ꯌꯥꯏꯐ ꯌꯨꯝꯕꯥꯜ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯁꯤꯕꯔꯥꯖ ꯁꯤꯡ ꯆꯥꯎꯍꯥꯟ ꯉꯁꯤ ꯕꯤꯍꯥꯔꯗ ꯆꯠꯀꯅꯤ. ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯔꯥꯏꯖ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩꯗ ꯏꯁꯤꯡ ꯏꯆꯥꯎꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯏꯁꯤꯡ ꯏꯆꯥꯎꯅ ꯁꯣꯜꯕ ꯂꯧꯃꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯒ ꯎꯅꯒꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤ ꯅꯒꯥꯎ ꯂꯣꯛ ꯁꯚꯥ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯃꯔꯛꯀꯤ ꯃꯤꯈꯜꯒꯤ ꯃꯤꯔꯦꯞꯆꯦ ꯄꯤꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯉꯁꯤꯅ ꯂꯣꯏꯔꯦ. ꯕꯤ.ꯖꯦ.ꯄꯤ. ꯃꯤꯔꯦꯞ ꯗꯦꯕꯥꯁꯤ ꯁꯔꯃꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯤꯔꯦꯞꯆꯦ ꯉꯁꯤ ꯄꯤꯁꯤꯟꯒꯅꯤ. ꯑꯣꯜ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯛ ꯐ꯭ꯔꯟꯠꯅ ꯕꯥꯗ꯭ꯔꯨꯗꯤꯟ ꯑꯖꯃꯜꯕꯨ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯔꯦꯞ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ. ꯚꯣꯠ ꯃꯊꯪ ꯊꯥꯒꯤ 6ꯇ ꯊꯥꯗꯅꯒꯅꯤ ꯄꯥꯎ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ.
2: बदलो बदलो आदत बदलो
3: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या
2: बदलो बदलो आदत बदलो अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें RBI कहता है जानकार बनिए सतर्क रहिए
0: थोरम संदुक्तु न तहंजरीबा से आकाशवाणी इम्फाल की FM संगाई जनल दिगिनी हौजिक पुंगफमसिदा लांथोकचरी गीत

0: गीत मथंग मथंग ताबी रे।
1: ये सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: आकाशवाणी इम्फाल हौजिक चैनल असीदा मखाताना चथजरकदब थौरम सिंगी दमक पूर्णिमा दा खुशी नजरी
3: थागचरी गोलमई थाइथिलु थौरम लान थुक्तुने तहन जरीब असी आकाशवाणी इम्फाल गी संगाई चैनल दगिनी ताबिरी बपुमनमकपु तरामन ओक्चरी खुरुमजरी थौरम मखा चथजरकप ओइना संगाई चैनल द हौजिक लान थोकजरी जिंगु थांगजिंग वुमेन्स कल्चरल एसोसिएशन न सानाबा रेडियो लीला हाउबकोनु ताबिरसी
4: ปลิมชะปิเจมาลมวยรังนิงทอกิอังหัมบชิงนะปิกลิบนะดูนิงทอนอกปาโบลุยบิจิงดอนตะปุคัลละกะลุยบิสิงนะเคเคมวยรังนิงทอกิมายอกตะอิสิลลิปานะกะรัมนะเลปกะนีดูนิงทอเจมาลนะฮากไลตะบดีขอยอลสะไกยะเซมุดครกะนี इपागी ये भी कंदबे याद बनी नहीं दुनिंग तो
5: पलिम से पीछे माल न दुनिंग थो नौ पाबो पहिरे कई दसिये लगे ये भी थो आई हिंगनी यवान अपाव तक पी युदी चे माल
4: थे लगन हुई दुनिंग थो मरम न लमलेन मदाई मा लमलेन लोग ताक पाट की फुंदी कबोंग मरकत ये भी थो आई हिंगन न बस संग जपम बोलो रुरो को चे माल हंदकी मापोग लांगोल सिदी चंबी लराक सेत पगुम इसेंग सेना उखायों तम खरबोय तेला गनुने दुनिंग थाओ
5: पलेम शपी चेमाल न दुनिंग थाओ नौ पादी लमले लोग ताक पांग करगे ले भी हौरो कोई चेमाल
4: मिलाय रबा
5: चेमाल
4: से सही दुनिंग थाओ सरे पी मयोम से तराक साप कुयाओ बनी उखरो कोई सेम गिलाय रबा
5: चेमाल ले भी हो रो कोई चेमाल ले भी हो रो नो पा खुम दो जे
4: ए बुदाउ थांग जिन कोई लाय सिंगु नंग गिनोंग दंबो लाय रबी न सुओय भी आई गोम द करम न बुतम लिगा इदु निंग तो इपागे यई भी तवाई तदी कन

0: हाय हाय के चनुलम कैपे मरांग चनुलम हेनमी के मचो हजिक फोबो काउरेन सनसेन बचती बा चलो है थिले नदो निथुंग नो पाबसु समुनम द पोद न पोखो काउरेन सनया मु मपुथन न पिजक द बने कोरोन नरन वाइट गई काउरेन अमुत चित्तन खमन पुंग योरक द बने चलो है थिले
1: बस बस हो पोपा मन भी सनया मसीगा इदो निथुंग नो वासीगा नवामी का बुधिम गड़ा मन भी संयम से बुतत करता नमूम दिया वा बबु ओयरग निये पंथा
0: या करीसो लेत्रवान नवा मचो नहाग नसु काव वाई की चिंग थकता अरंग अरंग नन कुमचाय चलो है नवा मचा से पूदन कावरे न संयम से छेलो चो याई भी नठवाई मचा तो मनिंग रबरे हाई रम के पिगे मचो
1: नमूम चचे रगे असाव कमी में यह वीरग नवा पोपा हाँ बले मपुपी न पाई नमुम मनी बुकरी के सुहन मागे बले

0: आकाशवाणी इम्फाल मोरंग थेबिना पाव पाजरी अहमद मरुई पाव लैकी पाउमी इकाई खुमब उत्प लोना आमजु लिंखी यांखनी सूब कमन थरम पांथली जर्नलीस्ट पेंशन फैमिली पेंशन की सेंफम हेंगलगने मुख्यमंत्री युना खेमजा लौटोखे कांपोपी जिला की चवां कि लियामगा खुलदा खुला पाब सकब नौमी कापिले यू खर मई जाख्रे केंद्र की यूथ एफेयर्स की राज्य मंत्री रग सा निखिल खरसेन मिजोराम लहु सिंग पोथो हेंगल ऑर्गेनिक फार्मिंग पुनी तंगाईफदब नोंचू बेंगल अथब एयरपोर्ट मरी सेंगोलगनी ऑल मणिपुर वाकिंग जर्नलिस्ट यूनियन अमजु लिंखी यांखनी सूब कमन थरम पांथली मणिपुर प्रेस क्लब इम्फाल पांथप थरम मुख्यमंत्री युना खेमचान गृहमंत्री गोविंद दास कौंथौजम एमएलए खुमुकचम जय किशन एमएलए खोंबान ताबम इबोमजा एडिटर्स गिल मणिपुर की प्रेसीडेंट कोगेंद्र खोमद्राम अमजु की प्रेसीडेंट असेम भक्ता पाउमी सरुक यारी मुख्यमंत्री युना खेमचान लुचिंगना जर्नलिस्ट मेमोरियल पिलर लैसु कटप अमजु की हाने की प्रेसीडेंट जनरल सेक्रेटरी खुदोल पोट पीना इकाई खुमना थरम थोड़ सप्तम थरम मुख्यमंत्री युना खेमचान जर्नलीस्ट की पेंशन हाँ लुपान पीरबू लुपिंग तरह हेंगलगनी लौटोखी फैमिली पेंशन लुपिंग मंग पीरबू लिंग तरह पीरगनी लौटोखी
1: पेंशन से याम किनिंग बने अदा 2023-24-25-26 more than 1,200 crores GST down selling.
0: कांपोपी जिला की चवां किनिंग लियामगा खुलदा खुला पाब सकब नौमी कापिले नौमी कापिलब की थवों अथेंब फाव चतकी यू खर मई जाख्रे पाव खर नौमी कापनब की थोड़ों पुं तरामखाई हौरगा फाव चतकी चवां किनिंग लियामगा खुल कांपोपी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स किलोमीटर तरामरी रोम लाब खुल मफम हादगी हौदना सीआरपीएफना ग्सेली कांपोपी जिला की आई टी रोड नेशनल हाईवे टू मियाम लंबी थिंब की खोज चंसी मफम रेपिड एक्शन फोर्स की अहम टीम चंसीन इरंग लाशिब होनरी अहम सूब असम राइफल्स टेंगनोपल डिस्ट्रिक्ट पुलिस बॉर्डर पिलर मरफू तरुक की अकोब मफम निथौकाब थब चतबद प्रिपा की मई फारे है मणिपुर पुलिस की पाव मतुंग इना कक्षिंग पुलिस कमांडो निफु तरुक सूब असम राइफल्स की अपुन कांबू अमना के वाई के एल की मई हियांगलम पुलिस स्टेशन की मनुंग चनब हियांगलम वारखों मनुंगदगी फाकी सीआरपीएफ मणिपुर नागालैंड सेक्टर दगी पीरप अकक्नब पाव अमदा इम्फाल ईस्ट इम्फाल वेस्ट पुलिस कमांडो सीआरपीएफ की अपुन कांबू अमना इम्फाल ईस्ट की कोंपाल कोंखाम लेकाई एनआर एफ एन की मई अनी फारे मकई अनी मक मचिन मनावनी मकई असी ममांग थागी कुनी थोय द लमलोंग बाजार द एस एस बी पर्सनल सिंह अमसुंग था असी की तरह द खोंगाम पात सीआरपीएफ पर्सनल सिंह द नोमई कापसिलक पद चेनबनी खोंगाम पात सीआरपीएफ द एटेक चथकी बा अदुगा मरी लेनब केस अमदा मकई की मपासु ममांग द फाख्रबनी मकई द की काप यारीबा नोमई मरु निफु हुम द यावबा एके 47 राइफल अम काप यारीबा मरु अहुम यावबा 9mm पिस्तोल कार ऑक्टोरिसो स्कूटर फागले मणिपुर स्टेट लीगल सर्विसेस ऑथोरिटी मसलसाना सिंधुना एडवोकेट मेडिएटर सिंगी नोम की सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम नुंतिल हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर की ऑडिटोरियम पांथोकनी थौरम मसलसा हाई कोर्ट लीगल सर्विसेस कमिटी की एडवोकेट मेडिएटर पुनमक सरुक यागनी मसलसा की चेरोल आईन शांति रक्षा की फिवम हकथेंगना सरुक याब एडवोकेट मेडिएटर सिंगना वर्चुअल थौरम यागनी 임팔 지리밤 람비다 나시 지리밤 더기 가리 싱기 컨보이 레이러 하이리 에코이기 지리밤 파우민 하이 하우지 지리밤 더 LPG 볼렛 다렛 오일 탱커 양카이 아마숭 아테이 포체이 포바 가리 자니 마푸드라마 판푼나 가리 자훔 양카이 타루 판두나 레이리 타비리 바 파와시 아카스 바니 임팔 더기니 Kendra Gijut Affairs Amasung Sports Gidaize Mantri, Raksha Nikhil Kharsena Hairi, Mizoram Dala Usingugi Potho Engal Hanaba, Amasung Raija Duda, Pothokpa, Pothok Sing Mapalamda, Yonba Ngamnaba, Organic Farming Pungning Thawat Pagi, Tangai Phadaba Lai, Kendra Gijaize Mantri Asi, Ngarang Mizoram Da Thunglabani, Mahak Pung Khara Aizol Da Lairam Daga, Saituwal Jila Da Chatuna, Sarkar Gi Makok Thongba Official Sing, Amasung, Tongan Tongan Ba Sana Konabagi, Lup Singi, Mihut Singa, Wadi Sana Ki, Mipamadu da mantrin hai Mizoram da organic farming paikat pa yabagi masa yamna lai la u singu amasung horticulture gi pothok singni thina sem saduna packing taurabadi raise gi ma panda yon ba yagani makna raise sarkar gi official sing da miang gi kanaga da ba thabak hena paikat na ba amasung kendra sarkar gi scheme sing gi kanaba miam da hena phangana ba khangan ke mantri na Mizoram gi sports mantri lalang hingloba margasu wari sanaki Nongsub Bengal da Raja Sarkana Air Connecti Bhiti Hengal Hanaba Akanba Thaurang Paikhatpa Galoinana Athuba Matamda Raja Sida Airport Mari Hangduk Lagani Akasbani Gi Paumina Hai Airport Sing Adu Purulia Gi Sara South Dinajpur Gi Balurghat Alipur Duar Gi Hasimara Amasung Pasim Medinipur Gi Kalaikunda Da Sengotkani Uran scheme gi makha da airport mari ase semgot naba kendra ga rajya sarkar ga athuba matam da MOU ama sahi tongnar ba yai MOU ase tha ase gi kolum de da kendra gi civil aviation mantri KR Naidu ama chung mukhya mantri Shubhendu adhikari yauba thoram ama da sahi tongnagani Assam da Nagaon Lok Sabha seat ki marak ki mikhal gi mirep je pisinba ngasi loiragani BJP gi mirep Devashish Sharma ngasi mahak ki mirep je pisingani All India United Democratic Front na Badruddin Azmalbu Nagaon Lok Sabha seat ki damak makhoi gi mirep wen alak thokre marak sida mikhal asi ningthina pangthok pangamna ba magistrate sing amasung sector officer sing gi training ama Morigaon district library da pangthokre amorom da mikhal asi ki damak rajniti dol sing na vote khombagi thabak noma noma gi kankhalakli Nagaon Lok Sabha seat ki marak ki mikhal asi October 3 da pangthokani amasung October mapal da vote machine thigani Chhattisgarh State Election Commissioner Chinduna Namit Nini gi oiba State Election Commissioner Singhi Bharat Pumbagi Mipham Ama Ngasidagi Nabarai Purda Hauragani Election Commissioner Singhi Kunthani Toishiba Shuba Mipham Asi Rajyapal Ramen Dekana Hodokani Mipham Aduda Tongan Tongan Ba Rajya Singhi State Election Commissioner Singhna Mathang Ahum Laiba Panchayati Raj Institution Sing Amasung Urban Local body sing da hena sakti piba makoi gi thabak ta amak pal hen da ba hiram khudin mak ta konchin ba amasung pumna mak na saruk ya ba haibasi gi matang da kupna khana gani mipham asida ganatantra gi oiba mikhal da thoidok hendok na khang hairaba New Jersey gi Princeton University amasung America gi akhang ahi sing chu saruk ya gani Kendagila u singma masung lomi singi yai pa thaurang mantri Shivraj Singh Chauhan ngasi nomage khongchutta Bihar da satka dauri Kongsat aduda Chiri Chauhana Raija dugi isingi phibam yengchin gani amasung isawna cholaba longmi sing amadi imung manung singa su nagani aroiba da maruiba pau laikhi draba paumi singda ikai khunnaba ga utpaga loinana amjulin khatki bagi yakaini thoi chuba common thorum ngasi pangthokli journal singi pension amasung family pension gi senpham hengal lagani haina mukhyamantri Yumnam Khemsana lakthokre Kangpo Pizila ki sawang kining liang mai naga khulda ngarang khulai pai ba sakhang da ba chingna nongmai kapsilam de yung khara su mai sakre hairi Kendra gi jut affairs ke raise mantri Raksha Nikhil Kharsena hairi Mizoram dala u singu gi potho engal hana ba organic farming pon thogat pa gi tangai phada ba lei amasung Nongsu Bengal da athuba matam de airport mari changot lagani pauloi jare

धन्यवाद पूर्णिमा। नमस्कार श्रोताओं, मैं खुराइजम बेबी रोशनी आप सभी श्रोताओं का गीतमाला कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूं। और आप सुन पा रहे हैं 103.5 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित FM संगाई चैनल से।

श्रोताओं, आज बुधवार है और पहले की तरह हम आपके लिए लेकर आए हैं आपकी फरमाइश। तो सुनते हैं ये पहला गीत। फिल्म का नाम है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। आवाज़ दिया है लता मंगेशकर और कुमार सानू ने। शब्द रचना आनंद बख्शी के हैं और सुरों से पिरोया है जतिन ललित ने। इस गीत को सुनना चाहते हैं तो मया इलेकाई से तिलोतमा अथोकपम और संजेन बम से रोनाल हेंथोइबा तमा कैनाहन भी और उनके बहुत सारे दोस्त। तो सुनते हैं ये गीत आप सबके लिए। मैं प्रस्तुत करती हूँ।

दूसरा गाना पेश है भूल भुलैया 3 से, आवाज़ दिया है अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल ने, बोल समीर के हैं और सुरों से पिरोया है प्रीतम ने। इस गीत को सुनना चाहते हैं लांगजिंग से हिजम सुरचंद्र, तो सुनते हैं आपके पसंद का ये गीत।

तीसरा गाना प्रस्तुत है मोहब्बत फिल्म से, आवाज दिया है सोनू निगम और विनोद राठौर ने, शब्द रचना समीर के हैं और संगीत से सजाया है नदीम श्रवण ने। इस गीत को सुनना चाहते हैं झारखंड से, लिसनर के नाम है शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल गोप, शिवांश गोप, संगीता गोप, लिपि गोप और दीपाली गोप। तो सुनते हैं आप सबकी पसंद का ये गीत।

श्रोताओं, आपने अभी ट्यून किया है आकाशवाणी इम्फाल केंद्र के FM संगाई चैनल से कार्यक्रम आपकी फरमाइश, और मैं आपकी रेडियो सखी खुराइजम बेबी रोशनी। आइए अब सुनते हैं चांदनी फिल्म से बबला मेहता और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में एक गीत। बोल आनंद बख्शी के हैं और सुरों से पिरोया है शिव हरि ने। इस गीत को सुनना चाहते हैं कौतुक मयाई लेकाई से फिलिप्स मंगांग। तो सुनते हैं आपके पसंद का ये गीत।

कार्यक्रम के आखिरी पायदान पर पेश है दम लगा के हैसा फिल्म से मोनाली ठाकुर की आवाज में एक गीत। शब्द रचना वरुण ग्रोवर के हैं और संगीत से सजाया है अनु मलिक ने। इस गीत को सुनना चाहते हैं लम्फेल सना कैथिल से सनानो बोबोइते लिया जोसेफ कोयरिंग और डायरीना। सुनते हैं आप सबकी पसंद का ये गीत।

श्रोताओं, आपको कैसा लगा हमारा आज का यह कार्यक्रम? मन तो नहीं करता आप सबसे विदा लेने का, लेकिन घड़ी की सुइयां हमें इशारा कर रही है। बाद में 2:30 बजे आपसे फिर मिलेंगे फौजी भाइयों के दैनिक कार्यक्रम में, वो भी कंगला चैनल में। मैं आज आप सब लोगों के लिए कार्यक्रम फिल्म संगीत प्रस्तुत करूंगी, तो मेरा इंतजार कीजिए। फिर मिलेंगे, नमस्कार।

0: हैं ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: हेलो,

0: हेलो हेलो
1: हेलो
0: तांजरी कॉल तो बिरली से मिंग लाइफ हम हाई बियो
1: मैडम यूरेनियम दे कराम थाब लाइन मैडम
0: यूरेनियम बम दगी थाब लाइ करम बेसे ताबी गनी हाई बियो
1: हो मैडम पुकी दगी किसी दो दगी पुष्पा रानी का दिनेश का छप्पा मम अमन द अजिंगी अनुआल थोड़े हज़ा
0: आंगो
1: लड़ो मया थोड़ा का है बतो ती काज़ के निताम
0: होय होय फनी फनी पुष्पा रानी का दिनेश का निपुण सक मिना बेसा ही ने दुगा सही रंग बना रे राजेन जिंग को पम सही रंग बने गोपी ने
1: होय होय
0: थाब लाई हो जिसे पुगे दो बिर कई दो बिरम ही बनो
1: मैडम आई दिने मिस्टे ऑपरेशन का उधर नहीं सिप पगा मैडम और की जेजी वो जब तार जल्ले ले रहे थे मिस का तक पगा नम दे रहे
0: थे मिस से करी ऑपरेशन तो बिरी सी बो करी नुआई तब गिनो
1: वो ने नामु लो उधर ना ऑपरेशन का उधर डाटिपिक ले बा वो खाई भाई करे अधे अमुखरा उड़े अधे ने हंका मु हैंग चे उनका तो ने ada umum na ne loi mam da la ba mu tu du du le ai ta ka pa ga ada bi ne ta ha te kara di u re na ma bu di u ba adu adu mai ta ga ri ai
0: wa me e ko gi mai kai da gi su yang tu na phagat pi ba ul bi ro ai na ai ji hoi
1: hoi ha je wa khan je phada ra ga le je ri
0: e ko gi program sing ta bi ra ga wa khal dung ai ta ba kau tu i ha be se ta ban ma tam da ko su du ki ma ti dung ai je tu na phagat pa su ai bi ro du ga ho ji ti ꯍꯛꯆꯥꯡꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟ ꯕꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯆꯥꯕ ꯊꯛꯄꯗꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯃꯗꯗꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯔꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯏꯁꯩꯁꯤ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯊꯝꯖꯔꯒꯦ ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯊꯥꯕ ꯂꯩ
1: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: बदलो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो
1: हेलो ताजर
0: ने
1: यहाँ
0: दाई तो ढोकले ने मेडम होगा तो उसके नो मेडम आ
1: हेलो
0: कनो भुगा टुडेल की हिरान जी तो अंतंग तो बिरंग गिरा अंतंग हाजिरंग गिरा मेडम
1: जे मैं खुगा तुरेल दी हिरान
0: तो
1: भी
0: जरे
1: हरी
0: इबा
1: बोलो
0: इसे नंबर फुजिंग चिंग टके हवाई बम इबो तो बा
1: इबो चोबा ngak pi ga ni ise do adu gi lila do yam na sukui re aingon da dialog do kitang wa na thoe ato pa lila ate yo na hambi ro yam pa za lila ne man hai
0: adu gal chi gi khugai ran gi par lo gi meri adi de gi yam na kap lila di ko
1: hoi hoi
0: adi gi ayam na haina ba mo hu na amar to gi yam na kap man chi gi dialog amad mai am de gi lila gi mare te gi am ten to gi lang bunu Beda.
1: Aku pergi langat tu ni ni tahu risi.
2: Perlu lagi mai.
1: Perlu lagi mai. Kita
0: tahu jangan lupa coba. Amai hati atau bilang kira. Angkat tu kita guna
1: nombor. Terus sambil degi mati aku dah lupa segi. Aku pengat dah sumta suko. Mayam nak kena tahu.
2: Ibu coba tu dia. Ibu mesti degi sudah lupa setabi resi. Yang pun nama.
1: Terus sambil degi mati aku dah lupa segi. Ibu lagi iskul kabin yang napa. Sak thongge tau busu, cingpu da cing maru amat telat tadi. Matam dia suma suma hausilai. Ima dubu moyang ke tien kaki badubu, suan na lagde. Kari tau rabazano. Nga kharap budu na sakhi badu, sitra bazat lakangde. Ngarang numi dangsu, hai kakara nga laga sabo natana. Sak amat ta sakit rabani ibu ase. Ngasisu amuk cak cada na iskun cak batara bra taurisibo.
3: Thank you.
2: Yam na phasa bada lo umsu to bire je ma ada wari rom da mu hyper onjala kan se da ichi ma khu gi manipur gi theater gi lam da khongda biri ba miwe ayam bana film gi lam da so du ma yau bu se thenga je ichi ma gi oina de film da gi offer gum ba lak pa hai di smaina mama sa biu matai ma sa biu na tragana sima sa biu hai bana ching ba approach to rakhi badi le bi bra
1: इसे दी कनो ने लाइ सारिंगे मतम द थवाई की थवाई द हेलोइन की मामा अब तंग दी साजे खरे बा सेलुलोइ फिल्म द अदु की मतुंग द युम हेक पान बदे की आई मिलोन सु कया ले जे दे अदु ग मिन खरा दुम हाइर प याओ या द की फिल्म की डबिंग गुम बदो अदु गुम बजो खरा तौ जरे ए अदु ग फिल्म की कुम बदु दी कोई की नाइट की सेलिन कई कई याओ ब मतम द आई आई की संबी न ब मी दो अदे की नोई ता मोई सु थबक चिन बनी ना अदे के दुम फिल्म से आई ना अदुम छरुक या पंगम जे खिद्रे
2: इचे मन ख्वाइ द की पाम जब कोई की ड्रामा के आर्टिस्ट से आई दी सी सी मा मा हे तारु बदे की मै खोंजल तारु दे से ड्रामा द का थवा याओ रखी बनी काई खंज ब ड्रामा के आर्टिस्ट से कना नोई बी
1: कई करने की मामा द करने की मामा कस कुंती साब दो इसी इसी में ईबीएम ईबीएम दो अदो आई ने खाई देगी पाम से बा नी आर्टिस्ट
2: इसे मने यूं पान बिरको मतम द सेक माई देगी कोई की क्याम गेरूं द पालक पसे इसे इधर कोई की नौ ने यूं पालक पाई पसे मतलब वो चटना बी अदेगी दी खर खेना बदी तुम ले रहम दोइने बा इसी में आम से कलो इन्हें ना ड्रामा सिजो मुक्सु चटना बसो होना दोइने बा

0: हेलो हेलो,
1: हेलो, गुड
0: गुड इवनिंग।
1: इवनिंग सर। अच्छा,
0: मिंग गले फोंग हानम तंग खंग बिना से
1: भाई मतलब
0: मिंग मिंग से कितंग अमुक तंग का हाई बिर अगर याम नुमाइ जगह नहीं। ओहो याम नुमाइ जरे याम सिंग ना मैं एक सिंग ना हाई बिर है करी कर्म वर फिल्म की कर्म बिसे ही ताबी कनिंग ऐसी कॉल तो बिरक पड़ी। ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯏꯁꯩꯅꯤ ꯏꯁꯩꯁꯤ ꯊꯃꯣꯏꯅ ꯈꯣꯏꯗꯥꯕꯤꯔꯕꯅꯤꯅ ꯃꯇꯦꯛ ꯑꯃꯁꯨ ꯉꯥꯡꯕꯤꯔꯝꯒꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯤꯗ ꯍꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯏꯀꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯂꯧꯎ ꯁꯤꯡꯎꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯒꯦ?
1: ꯂꯧꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯁꯥꯠꯂꯤ ꯁꯥꯠꯂꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯁꯤꯡ ꯆꯤꯡꯗꯕꯒꯤ
0: ꯍꯣꯏ
1: ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯗ ꯆꯤꯡꯗꯗꯧꯅ ꯇꯧꯕ
0: ꯑꯣ ꯏꯁꯩ ꯍꯧꯕꯤꯔꯣ
1: ꯇꯦꯡꯅꯔꯤ ꯅꯪꯒ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯍꯧꯕꯗ
0: ꯏꯁꯩ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯃꯇꯦꯛ ꯑꯃ ꯁꯛꯄꯤꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯊꯣꯏꯕꯤ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯁꯗꯥꯟꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯥꯔ ꯀꯦ ꯅꯟꯗꯦꯁ꯭ꯋꯔꯤꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯕ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟꯗꯣ ꯋꯥꯍꯦꯡ ꯆꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯂꯤꯕ ꯂꯣꯏꯅ ꯒꯣꯄꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯣꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔꯣꯅ ꯁꯦꯔꯥꯡꯂꯤꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯅꯤ ꯏꯁꯩ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤ

डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन एस नपांगथोकदौरिबा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट 2026 की दमक ऑनलाइन दा थाजिन बिरखिबा एप्लीकेशन सिंगदगी एक्सेप्ट तौरबा प्रोविजनली एक्सेप्ट तौरबा अमदि रिजेक्ट तौरबा एप्लीकेंट सिंगि लिस्ट डिपार्टमेंट असिगी वेबसाइट www.manipureducation.gov.in दगी येंगबिबा यारगनी एलिजिबल ओरबा कैंडिडेट सिंगना सेप्टेम्बर 10 फावबदा अपामबा एग्जामिनेशन सेंटर ओगदबा डिस्ट्रिक्ट सिंग डिपार्टमेंट की वेबसाइट नत्रगा वेब लिंक www.tet2026manedus.com सिजनदुना खनबिगनी करिगुंबा एग्जाम सेंटर की डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस खलौद्रबदी एप्लीकेशन थागलकपदा मेन किबा प्रेजेंट एड्रेस की डिस्ट्रिक्ट अदुगी मनुंगदा एग्जाम सेंटर पिरकनी एलिजिबल ओरबा कैंडिडेट सिंगना डिपार्टमेंट की वेबसाइट नत्रगा पंजेकिबा वेब लिंक www.tet2026manedus.com वेब लिंक असिदगी सेप्टेम्बर 13 तगी हौना एडमिट कार्ड डाउनलोड तौब यारगनी हेन अकोपमरोल डिपार्टमेंट की वेबसाइट www.manipureducation.gov.in दगी खंगबिगनी खंगन जरीबा डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन स्कूल्स मणिपुर

डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन एस न पांथोकदौरिबा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट 2026 की दमक ऑनलाइन दा थाजिन बिरखिबा एप्लीकेशन सिंगदगी एक्सेप्ट तौरबा प्रोविजनली एक्सेप्ट तौरबा अमदी रिजेक्ट तौरबा एप्लीकेंट सिंग लिस्ट डिपार्टमेंट असिकी वेबसाइट www.manipureducation.gov.in दगी येंगबिबा यारगनी एलिजिबल ओरबा कैंडिडेट सिंगना सेप्टेम्बर कुन फाउबदा अपामबा एग्जामिनेशन सेंटर ओगदबा डिस्ट्रिक्ट सिंग डिपार्टमेंट की वेबसाइट न ट्रग वेब लिंक www.tet2026manedus.com सिजन अदुना खनबिगनी करिगुंबा एग्जाम सेंटर की डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस खलौद्रबदी एप्लीकेशन थागलकपदा मेन खिबा प्रेजेंट एड्रेस की डिस्ट्रिक्ट अदुगी मनुंगदा एग्जाम सेंटर पिरकनी एलिजिबल ओरबा कैंडिडेट सिंगना डिपार्टमेंट की वेबसाइट न ट्रग पंजकीबा वेब लिंक www.tet2026manedus.com वेब लिंक असिदगी सेप्टेम्बर 13 तगी हौना एडमिट कार्ड डाउनलोड तौब यारगनी हेन अकोपमरोल डिपार्टमेंट की वेबसाइट www.manipureducation.gov.in दगी खंगबिगनी खंगन जरीबा डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन स्कूल्स मणिपुर

श्रेया घोषाल की आवाज़ में आपने सुना कृष्णा कॉटेज का ये गीत, नीलेश मिश्रा का लिखा ये गीत और संगीत से सजाया इस गीत को अनु मलिक ने। स्वागत करती हूं आप सभी का हर श्रृंगार कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ रितिका और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सिर्फ और सिर्फ 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

दिव्या भारती और कमल सदाना पर फिल्माया ये गीत आपने सुना रंग फिल्म से। अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज और नदीम श्रवण का संगीत और इस गीत को लिखा समीर ने। किसी ने क्या सही कहा है कि दिल को जो अच्छा लगे भाई उसी से प्यार हो जाता है, है ना। आंखों का क्या है, आंखों को तो सभी अच्छे लगते हैं। रहते हैं आज भी सांसों में तुम, यादों में तुम, किताबों में तुम, और जब भी कलम उठाकर लिखता हूं तो बनकर गजल आ जाते हो लफ्जों में तुम। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल, कार्यक्रम है हर श्रृंगार और मैं हूं आपके साथ रितिका।

तो दोस्तों हर श्रृंगार में आज बस इतना ही। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार। बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरती प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के तकनीकी भविष्य को आकार देने में सरकार और सेमीकंडक्टर उद्योग के बीच घनिष्ठ सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रधानमंत्री ने प्रतिभा, प्रौद्योगिकी अपनाने और बुनियादी ढांचे में भारत की मजबूत नींव का उल्लेख किया। उन्होंने कौशल विकास, नवाचार और AI तथा क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में उद्योग की अधिक भागीदारी का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेमीकंडक्टर तंत्र अब व्यापक स्तर पर और अवसरों के चरण में पहुंच रहा है। बैठक में प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया। प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली के यशोभूमि में 5वें सेमीकॉन इंडिया का शुभारंभ करेंगे। 3 दिन के इस सम्मेलन में सहयोग बढ़ाने, नवाचार को गति, विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती देने तथा निवेश आकर्षित करने का अवसर मिलेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के अंतर्गत अनिवार्य दायरे में शामिल होने को वेतन सीमा 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए प्रतिमाह कर दी है। संशोधित वेतन सीमा कल विश्वकर्मा जयंती से प्रभावी हो जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा काफी बढ़ जाएगा।
1: आज कैबिनेट में हमारे देश भर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। प्रोविडेंट फंड का जो नियम है, उस नियम में अब तक 15,000 रुपीज की सीलिंग रहा करती थी। ये सीलिंग 2014 में तय की गई थी, इसको बढ़ाकर 25,000 रुपए पर मंथ सैलरी पे लेके आ गए। इससे करीब 51 लाख एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा।
0: इससे सरकार का वार्षिक व्यय लगभग 11,339 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। इस मंजूरी से भविष्य निधि बचत तक पहुंच बढ़ेगी और कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन सुरक्षा का विस्तार होगा। सरकार ने पाकिस्तान के शहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी गुट घोषित किया है। ये गुट युवाओं और छोटे अपराधियों को आतंकवाद के लिए उकसाने के अलावा सीमा पार हथियारों, विस्फोटकों और नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल है। गृह मंत्रालय ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। इस गुट ने भारत की लोकतांत्रिक संरचना और सांप्रदायिक सद्भाव को निशाना बनाते हुए नफरत फैलाने वाले डिजिटल सामग्री भी प्रकाशित की है। आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति के अनुसार यह कार्रवाई की गई है। भारत ने सऊदी अरब में मक्का के नजदीक ड्रोन हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत सऊदी अरब पर हमले में लोगों और बुनियादी ढांचे को खतरे में डालने वाली कार्रवाइयों की कड़ी निंदा करता है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने की उम्मीद करता है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि इससे 1,40,000,000,000 भारतीय उपभोक्ताओं तक पहुंच आसान होगी और न्यूजीलैंड में रोजगार तथा आय में वृद्धि होगी। इस समझौते से न्यूजीलैंड से भारत को होने वाले 57% निर्यात पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। इसके पूरी तरह से लागू होने के बाद 95% निर्यात पर शुल्क हटा दिए जाएंगे या काफी कम हो जाएंगे। सभी भारतीय वस्तुओं को न्यूजीलैंड के बाजार में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी। दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि यह पुरस्कार 22 सितंबर को गुजरात के केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अनंत नाग को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने सहज अभिनय और बहुमुखी प्रतिभा से कई दशकों से भारतीय सिनेमा और खासकर कन्नड़ सिनेमा पर अमिट छाप छोड़ी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव और राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि यह पुरस्कार देश के महानतम कलाकार के लिए उपयुक्त सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त स्मृति चिन्हों और उपहारों की ई नीलामी कल से शुरू होगी। नई दिल्ली में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि इस वर्ष नीलामी के लिए लगभग 1500 वस्तुएं रखी गई हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by R.S. Raghu. Prime Minister Narendra Modi has emphasized the importance of close collaboration between the government and the semiconductor industry in shaping India's technology future. Mr. Modi stated this while chairing the Semiconductor Roundtable with leading global CEOs in New Delhi today. Prime Minister called for greater industry participation in scaling, innovation and emerging technologies such as artificial intelligence, AI and quantum computing. Mr. Modi reiterated the government's commitment to a predictable and responsive policy environment while emphasizing that policies must evolve in line with technological advancements and industry requirements. The roundtable was held ahead of the inauguration of the fifth edition of Semicon India by Prime Minister Modi in New Delhi tomorrow. The Union Cabinet has approved the increase in the wage ceiling for mandatory coverage under the Employees Provident Fund Organisation from 15,000 rupees to 25,000 rupees per month. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw made the announcement while addressing the media after the Cabinet meeting in New Delhi today. He said the decision is expected to benefit over 51 lakh additional employees. Mr. Vaishnaw said the revised wage ceiling will come into effect from Vishwakarma Jayanti tomorrow.
1: 25,000 rupees per month salary will be the new ceiling for PF deductions. Isse kareeb 51 lakh employees ko iska benefit milega, jo ki 15 to 25 wale band mein the, they will start getting covered in the new PF rules. Bharat Sarkar ka is pe estimated government expenditure rahega about 11,339 crore rupees every year.
2: The government has declared Pakistan-based Shehzad Bhatti Network as a terrorist organization under the Unlawful Activities Prevention Act, UAPA. The terrorist group is involved in smuggling of arms, explosives and narcotics across borders, apart from inciting youths and petty criminals into terrorism. The Union Home Ministry has issued a gazette notification in this regard. A special NIA court at Jagdalpur in Chhattisgarh's Bastar district today sentenced all 10 convicts to death in the 2013 Jhelum Valley Maoist attack case. The convicts have been given 30 days to appeal against the verdict in the High Court. On 25th of May in 2013, 27 people, including several senior Congress leaders, were killed and 35 others were injured in Maoist attack in Jhelum Valley in Bastar district. BJP will run a month-long nationwide Seva Sankalp Abhiyan from tomorrow to mark Prime Minister Narendra Modi's birthday. With a focus on highlighting his commitment to public service and encouraging people, particularly the youth, to undertake acts of service. The campaign will also mark 25 years of Mr. Modi taking oath as the Chief Minister of Gujarat on October 7, 2001. The party will organize various activities under the campaign, keeping in focus the spirit of service associated with Prime Minister Modi's personality. The Prime Minister's birthday tomorrow will be observed as Seva Divas and blood donation camps will be organized across the country. Veteran actor of Kannada cinema Anant Nag will be conferred the prestigious Dada Saheb Phalke Award for 2024 for his outstanding contribution to the Indian cinema. The Information and Broadcasting Ministry made the announcement today. The award will be presented at the 72nd National Film Award ceremony on 22nd of this month at Kevadia in Gujarat. The Delhi government has approved the construction of a 250-bed super-speciality cum trauma block at Guru Tegh Bahadur Hospital in Dilshad Garden of Delhi. This decision was taken at a cabinet meeting chaired by Chief Minister Rekha Gupta in New Delhi. The Chief Minister said that the project will cost over 244 crore rupees and the block will be constructed under Phase 4 of the Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana. It will have 250 beds, 48 specialist OPD rooms and 9 modern operation theatres. In men's cricket, India will play the final match of the 3-match T20 International Series against Afghanistan at the Arun Jaitley Stadium in Delhi tomorrow. The match will begin at 7:30 p.m. Indian Standard Time. India have already secured the series with convincing wins in the first 2 matches. And that is the end of this news bulletin.
3: अब सुनिए आज शाम 6:30 बजे प्रसारित मार्केट मंत्र कार्यक्रम का पुनः प्रसार।

0: Good evening and welcome to Market Mantra. I'm Arjun Chowdhury and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
1: नमस्कार मार्केट मंत्र में आपका अभिनंदन श्रोताओं स्टूडियो में आज चर्चा के लिए हमारे साथ विराजमान हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ सिद्धार्थ सिंह सिद्धार्थ कार्यक्रम में आपका अभिनंदन
2: नमस्कार प्राची गुड इवनिंग अर्जुन
0: गुड इवनिंग सर
1: चर्चा शुरू करेंगे मगर उससे पहले आइए सुने सुर्खियां
0: Benchmark domestic stock market indices rise, Sensex gains over 300 points, Nifty settles at 23,218. New Zealand passes legislation to implement free trade agreement with India and global crude oil prices decline.
1: प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में बढ़त सेंसेक्स 300 अंकों से अधिक बढ़ा निफ्टी 23,218 पर स्थिर हुआ न्यूजीलैंड ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता लागू करने के लिए कानून पारित किया और दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें घटी
0: And before we take our main stories in detail, here is an important disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: आइए श्रोताओं बिना विलंब किए जानते हैं कि दिन के अंतराल में हमारे शेयर बाजार ने कैसा प्रदर्शन किया प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में आज लगभग आधे प्रतिशत की बढ़त देखी गई सेंसेक्स 333 अंक बढ़कर 74,336 पर बंद हुआ वहीं निफ्टी 99 अंक की बढ़त के साथ 23,218 पर स्थिर हुआ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स बिना किसी बड़े बदलाव के बंद हुआ जबकि निफ्टी स्मॉल कैप 100 में 0.2% की गिरावट आई इससे पहले अमरीकी बॉन्ड यील्ड और कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद बाजार सकारात्मक रुख के साथ खुले और पूरे सत्र के दौरान सीमित दायरे में कारोबार करते रहे
0: Benchmark domestic equity indices ended over 0.4% higher today. Sensex gained 333 points to close at 74,336. Nifty added 99 points to settle at 23,218. In the broader market on the NSE, the Nifty Mid-Cap 100 index ended on a flat note, while the Nifty Small-Cap 100 index dropped 0.2%. Earlier, the markets opened on a positive note despite elevated US bond yields and crude oil prices and traded within a range throughout the session.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 18 कंपनियों के शेयरों में बढ़त दर्ज की गई सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों में आईटीसी 2.5% एसबीआई 2% से अधिक और एक्सिस बैंक के शेयरों में लगभग 2% की बढ़त हुई वहीं खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों में टीसीएस 2.5% से अधिक इंफोसिस लगभग 1.5% और टेक महिंद्रा के शेयरों में 1.3% की गिरावट आई
0: In the sectoral indices on the BSE, 18 out of the 28 sectors edged upward among the top gainers. Insurance advanced 2%, FMCG rose over 1.4% and PSU banks added 1.1%. In contrast, Focus IT shed 1.5%, IT lost 1.4% and telecommunications dropped almost 0.8%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,351 companies declined, 1,979 companies advanced, and 231 companies remain unchanged.
1: और अब जान लेते हैं रुपए का हाल अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया एक डॉलर की तुलना में आज अपरिवर्तित रूप से 95.96 रुपए पर बंद हुआ सिद्धार्थ हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें जो हैं उसमें गिरावट आई है और एक तरफ हम देख रहे हैं वहीं पर अपने स्टॉक मार्केट में हमने देखा कि शुरुआती बढ़त जो है उसे उसी तरीके से रेंज बाउंड में रखा है तो ये क्या दर्शाता है क्या इंगित करता है
2: नहीं प्राची जो आपने बात कही कि कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई है मैं उसको कहूंगा कि मामूली गिरावट आई है अभी भी हमारे लिए वो जो है अनकंफर्टेबल रेंज के बाहर है मतलब जो कंफर्टेबल रेंज है उसके बाहर है मतलब 100 बिलियन डॉलर अभी भी क्रूड प्राइसेस मुझे लगता है 107 बिलियन डॉलर के आसपास है और जो इंडियन बास्केट है वो तो तकरीबन
1: लेकिन जो भी गिरावट आई है मे बी उसका पॉजिटिव सेंटीमेंट वहां झलक रहा हो
2: हां बिल्कुल हाँ हो सकता है कि आज एक इमीडिएट जो आज आपने देखा बाजार जो पॉजिटिव जोन में थी वो एक कारण हो सकता है लेकिन जो आपने बात बोली कि रेंज बाउंड है कहीं ना कहीं एक ब्रॉड रेंज में मार्केट ट्रेड कर रहा है और जो दुनिया में अनिश्चितता है चाहे वो क्रूड ऑयल को लेके हो जाए मिडिल ईस्ट में जो क्राइसिस चल रही है और दिनों दिन वो स्थिति कोई सुधार नहीं दिख रहा है अनिश्चितता जो है एकदम निश्चित हो गई है जिसको कहा जाए, तो मुझे लगता है वो बड़े कारण है ये। और ये सब तब है जब कि जो भारत के अपने आर्थिक जो इकोनॉमिक आप पैरामीटर्स कह लें या जो हमारे फंडामेंटल्स हैं वो एकदम बढ़िया हैं, मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। हमारा जीडीपी जो Q1 का आया बहुत ही उत्साहवर्धक था, नंबर 7.8 जो कि एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा आया। और उसके अलावा अगर अभी भी आप इन्फ्लेशन देखेंगे, ठीक है थोड़ा ऊपर आ रहा है क्योंकि क्रूड ऑयल प्राइसेस की वजह से दबाव है, लगातार बढ़ रहा है, अब तकरीबन 5% के आसपास है, लेकिन जो रेंज है आरबीआई की अभी भी उसके अंदर है जो, तो मुझे लगता है। और जो भी आप डेटा देखेंगे, टैक्स का डेटा देखें चाहे जीएसटी कलेक्शंस का डेटा देखें, कार सेल्स या जो भी ऑटो सेक्टर में जो सेल्स हैं, तो सारा आपको पॉजिटिव साइड है। लेकिन चूंकि जो दुनिया में अनिश्चितता है, जो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन है, अनसर्टेनिटी है, कहीं ना कहीं वो हमारे बाजार पे हावी है।
0: So today, do you expect that there was short covering in the market because we saw a bounce back in the Nifty Bank, which went up by almost 1%. PSU Bank Index also went up. Do you see value buying in the markets right now, even though if it's for one day?
2: I think, Arjun, what you're saying is... I would agree more with the word value buying. I think people are also shifting more from small cap, medium, mid caps to the defensive, to the large caps. Probably looking at more secure, trying in these times of uncertainty, you tend to exit the stocks or the benchmarks where you see there could be more volatility. Obviously, the first in line to take hit is obviously the small caps and the mid caps. So probably I think the intent of the investor is to shift to the safer havens, and obviously then large caps are the best bet in these times of uncertainty.
0: Also, central banks are holding their meetings. RBI is going to conduct its monetary policy committee meeting from October 5 to 7. Repo rate is 5.25%. Do you see rates being hiked and valuations change? Because banking incomes will also be impacted accordingly.
2: See, Arjun, more than that, I think before RBI takes a decision on the rates, on the repo rate, I think more than that, the what is being watched is the decision what tonight we get on the decision taken by the Fed Reserve on its own interest rate, because the expectation is there's a huge expectation that they would hike interest rates in US. And what happens is, and already if you look at the US bond yields, they're over 5% since I think after 2023, it's for the first time that they have inched over 5%, the 10-year bond yield. And obviously that also puts pressure on Indian bond markets, also on the also indirectly on the Indian equity market, because then the FIIs, the foreign investors, tend to go and invest in the US market because the interest rates obviously are going to go up. And it is always said that US Treasury bonds are the most secure instruments, most secure instruments in the world.
1: सिद्धार्थ, क्षेत्रीय स्तर पे जैसा कि अर्जुन ने पहले अपना सवाल पूछा, मैं उसी स्तर पर आपसे बात करना चाहूंगी कि क्षेत्रीय स्तर पे अगर हम देखते हैं तो एक आम निवेशक, एक आम जो श्रोता जो हमारे प्रोग्राम को सुनता है, उनके लिए आप बताइए कि अभी कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर निवेश करना लाभकारी हो सकता है, या यूं कहिए कि समझदारी भरा हो सकता है।
2: नहीं देखिए, एक तो मैं पहली बात ये कहूंगा कि अगर आप इस समय इन्वेस्ट कर रहे हैं भारतीय बाजारों में या शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर रहे हैं
1: जी,
2: तो थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा आपको, धैर्य के साथ आएं, क्योंकि दुनिया में बहुत अनिश्चितता है और ये अनिश्चितता लगातार बढ़ रही है। और ये जो अभी तक एक फंडामेंटल्स, बहुत सारे जो फंडामेंटल चीजें हम मानते थे कि जब भी अनिश्चितता आती थी या तेल की कीमतें बढ़ती थी या वॉर आता था, तो ये हमेशा माना जाता था कि गोल्ड प्राइसेस हमेशा बढ़ती हैं। इस बार भी बढ़ी हैं, लेकिन उस अनुपात पे नहीं बढ़ा गोल्ड। इनफैक्ट बीच में जब अनसर्टेनिटी बढ़ी तो हमने देखा गोल्ड प्राइसेस नीचे भी आई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हाँ, क्योंकि हमारे मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग हैं, लेकिन हमारे साथ एक मुझे लगता है जो प्रॉब्लम है वो है क्रूड प्राइसेस, क्रूड ऑयल, जो कि हम 90% इंपोर्ट करते हैं, और क्रूड काफी सारी इंडस्ट्रीज के लिए क्रूड ऑयल इज द रॉ मटेरियल, द मेस मटेरियल व्हिच acts as raw materials for a lot of industries. तो उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट रहेगा और अभी वो लग रहा है कि रहेगा लंबे समय तक. सप्लाईज नहीं मुझे लगता इम्पैक्ट होगी, लेकिन उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था पे भी इम्पैक्ट होगा. तो थोड़ा बहुत अगर आप भारतीय बाजारों में इन्वेस्ट कर रहे हैं या निवेश कर रहे हैं तो थोड़ा लंबी अवधि, मतलब मेरा मानना है कि कम से कम 3 साल का मन बना के आए कि मतलब अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगले साल बहुत मुनाफा हो भी सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं हो, क्योंकि हमारे मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप अपने दिमाग में ये रख के आए कि थोड़ा आपको समय वेट भी करना पड़ सकता
1: है. क्योंकि ये भी कहा जाता है ना कि जब बाजार ढलान पर हो तब खरीदारी, असल खरीदारी उसी वक्त होनी चाहिए.
2: हाँ, लेकिन प्राची होता क्या है कि जब भी आप देखेंगे कहीं अनिश्चितता आती है या कहीं डर होता है, भय होता है, तो हर आदमी बहुत अपने डिसीजंस को बहुत ना कैलकुलेटेड, या आदमी सोचता है थोड़ा और रुक जाते हैं, थोड़ी स्थिति जो काले बादल हैं वो छट जाएं तब लगाएंगे. लेकिन मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, अगर मुझे आप मुझसे पूछेंगे तो मैं जरूर ऐसे वक्त को चुनूंगा निवेश करने के लिए. लेकिन हाँ, मैं ये भी साथ में कहूंगा कि बहुत बढ़िया से अपनी जो है फैक्ट फाइंडिंग बढ़िया से करें, अच्छी कंपनियां चुने. और आपने जिन क्षेत्रों की बात की तो मैं वहां पे आजकल जो नया, एक तो जैसे सेमीकंडक्टर्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो नए क्षेत्र हैं, स्पेस है, डिफेंस है, ईवी है, बहुत बढ़िया आपने बोला. उसके साथ साथ फार्मा हमेशा एक डिफेंसिव क्षेत्र है, तो मैं बोलूंगा ऐसे अच्छा FMCG को भी मैं हमेशा मानता हूं, क्योंकि इंडिया की जो कंज्यूमर स्टोरी है, जो कंजम्पशन स्टोरी है, वो पूरी तरह से इंटैक्ट है.
0: सो स्पीकिंग अबाउट इन्फ्लेशन इंपैक्टिंग इंटरेस्ट रेट्स अर्लियर एंड देन लिंकिंग इट टू FMCG, बिकॉज देयर मार्जिंस हैव ऑलवेज बीन अफेक्टेड बाय बिजनेस inflation at the wholesale price index level, but that went up by 1.4% today. You said that it's a good sector to get into, especially long term. What are the other factors that one can look into when it comes to FMCG, fast moving consumer goods?
2: See, Arjun, I would say as far as fast moving consumer goods, I think it is always, it's an area which I think always is, you will always have, stays in green. I don't see very lot of challenges for...
0: Like pharmaceuticals.
2: Yeah, because FMCG, what do we mean by FMCG? What the products which you goods and products which we consume on a daily basis. So I think the demand in India is, the consumption demand is intact, and even there was a fear in some about a month back or 15 days back that our monsoons have not fared that well. But I think as time passed on, even monsoons have been good. Agriculture sector is doing good. So I see the rural demand also intact, and inflation for us has still not passed on or has not grown so rapidly. So I think, and as far as RBI guidance, if we have to go by their guidance, so they do not see it going beyond 6% for the entire year. So I think if inflation also remains under control, so I don't see FMCG companies passing on prices, or we see prices going up sharply.
0: What about information technology? That saw a drop in valuation today. It saw a drop in valuation yesterday also, despite the earnings being good.
2: I think, Arjun, in the near term, IT valuations have been taking a hit, and not to obviously say about today or yesterday, but I personally believe that Indian IT industry is very robust, very strong, and already we are seeing there are a lot of questions being raised on the way we are seeing artificial intelligence, or the uncertainty being created by artificial intelligence. So I think it's a good value buying if you ask me. But yes, one should wait and watch, and I think probably invest in small tranches.
1: अन्य खबरों पर भी सिद्धार्थ आपसे बात करेंगे, मगर उससे पहले जानते हैं कि दरअसल अन्य खबरें हैं क्या. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के अंतर्गत अनिवार्य कवरेज के लिए वेतन सीमा को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 प्रति माह कर दिया है. मंत्रिमंडल की बैठक के बाद आज मीडिया को संबोधित करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस निर्णय से 51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारी अनिवार्य EPFO कवरेज के दायरे में आ पाएंगे.
3: पुराना जो कैप था वो सितंबर 2014 में एस्टेब्लिश हुआ था. तब से अब तक एवरेज जो सैलरी है वो काफी बढ़ी है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ी है. आज एक रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय की एवरेज इनकम करीब करीब ₹23,000 पर मंथ है.

0: कि पहले से करीब 2.5 गुना ज्यादा बढ़ी है। भारत सरकार का इस पे एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रहेगा अबाउट 11,339 करोड़ रुपीस एवरी ईयर।
1: सिद्धार्थ, विकसित भारत की परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए जो सामाजिक सुरक्षा की बात आती है, उससे ये किस तरीके से कनेक्टेड है और कैसे लाभान्वित करेगा?
2: नहीं, मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन, जैसे मंत्री अश्विनी वैष्णव मंत्री जी ने भी बोला अपने अनाउंसमेंट में, क्योंकि अब अगर उसको 15,000 से 25,000 कर रहे हैं तो, और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 25,000 तक जिसकी सैलरी है उसको अनिवार्य रूप से, जो सबसे बड़ी चीज यहाँ आती है कि कंपल्सरीली आपको ईपीएफओ के दायरे में लाया जाएगा, या कंपनी आपको ईपीएफओ के जो बेनिफिट है, जो सोशल सिक्योरिटी जो प्रोवाइड करता है, उसमें आना ही पड़ेगा। तो मुझे लगता है उस लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओवर द ईयर जैसा उन्होंने बोला 2014 में लास्ट रिवीजन हुआ था 15,000 तक, तो उसके बाद से बिल्कुल ठीक बात है कि अब सैलरीज बढ़ गई, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया, तो किसी भी एवरेज सैलरी 23,000 जो उन्होंने जिक्र भी किया, तो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण फैसला है।
1: क्या ये बदलाव असंगठित क्षेत्र से जो संगठित क्षेत्र तक पहुंचने के लिए एक नया रास्ता, एक नई किरण के तौर पर हम देख पाएंगे इसे?
2: नहीं प्राची, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि देखिए प्राइवेट सेक्टर के लिए सरकार के जो सरकारी एम्प्लॉयज होते हैं उनके लिए तो एक पेंशन होती है उनकी, अब चूंकि थोड़ा उसका एक रूप प्रारूप बदल गया है, जो सरकारी एम्प्लॉयज को पेंशन मिलती है, तो न्यू पेंशन पॉलिसी आ गई है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर में जो कर्मचारी जो लोग आज रोजगार पाते हैं उनके लिए एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड और का जो ईपीएफ का जो सोशल सिक्योरिटी का जो ये नेटवर्क है या ताना बाना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वही आपको पेंशन भी देता है, ना केवल आपको आपकी आपको आपका एक अंशदान जाता है जो आपको जब आप आपकी सेवाएं समाप्त होती हैं 60 साल पर जो पैसा मिलता है उस पर इंटरेस्ट रेट बहुत अच्छा मिलता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये भी है, क्योंकि आज मुझे लगता है किसी भी सेविंग स्कीम में सोशल सिक्योरिटी की सबसे ज्यादा अगर इंटरेस्ट रेट है तो वो एम्प्लॉय ईपीएफओ की में ही मिलता है, तकरीबन 8% का इंटरेस्ट रेट है आज भी, तो वो उस लिहाज से इम्पोर्टेंट है। साथ हमने कवरेज बढ़ाया तो अब ज्यादा लोग, जैसा 51 लाख की जो आपने फिगर पढ़ी, तो उतने ज्यादा लोग और अब इस कवरेज के पात्र होंगे। जी,
3: In more news, India's current account deficit widened to $7 billion in July 2026 from $3.2 billion a year ago, primarily due to a higher merchandise trade deficit. As per data from RBI, the merchandise trade deficit rose by $3.5 billion to $31.7 billion in July on an annual basis. According to the data, net FDI inflows rose by $2.8 billion from a year earlier to $7.3 billion in July. Net foreign portfolio investment too recorded an inflow of $4.1 billion against an outflow of $2.5 billion in July 2025. The overall balance stood at a surplus of $20.8 billion as compared with $0.3 billion last July. And this is a very important macroeconomic data that we're addressing right now, Siddharthji. Current account deficit, even though it's widening because of our imports, especially oil, we're seeing that exports have gone up substantially as far as a current account is concerned. But to a great extent, isn't that being capital financed by our FCNR bonds that depositors are getting a higher rate of interest? We're also having foreign direct investment that has gone up substantially. And the foreign portfolio investment on a net basis is much more as compared to a year ago. So it, effectively, the financing of our current account is quite effective that way.
2: Absolutely right, Arjun, and I don't see any reason for us to worry on this, because first, this is only data for the first 4 months, and if you look at the export figures in August, exports have grown rapidly, whereas our imports are coming down. If you compare it with last year, I think the imports are down by down to almost 9% or something. So I think, and not a reason, and as you rightly pointed out, we are seeing a sharp rise in FDI. FDI this year is expected to be very robust, and also an increase in portfolio investments, plus we also have a huge forex reserve, especially and more so after bolstered by the huge FCNRB deposits. So I don't see this as a reason for worry, and obviously what matters to us is also the full year data.
3: In more news, in New Zealand's parliament has passed legislation required to implement the free trade agreement FTA with India by a vote in favor of 93-29. In a social media post, New Zealand Prime Minister Christopher Luxon today hailed the country's FTA with India as a landmark deal that would open access to 1.4 billion Indian consumers and help boost jobs and incomes in New Zealand. Trade and Investment Minister Todd McClay said the agreement would provide New Zealand exporters with greater access to India, one of the world's largest and fastest growing economies. Under the pact, all Indian goods will receive duty-free access to the New Zealand market. Wellington has also agreed to invest $20 billion in India over the next 15 years. To what extent do you see this as a continuum to our trade agreements with other countries and unions? We have free trade agreement with the European Union, with the United Kingdom. We have agreements in place with the US, which is bilateral, and even Canada.
2: UAE, yeah. So we've been signing. I think India would be one of the, would stand out as a country which would have signed in last 2 years so many free trade agreements, one after another. And already I think the free trade agreement with UK is already come into is already applicable now, is already come into force. I think the one with European Union is also expected, and the one with New Zealand obviously again. And the most important part of these, the FTAs, is also the investment that the countries are promising into India. So $20 billion over 15 years is I think a very big plus for us. So these free trade agreements I see as also very important in times when there is trade protectionism, supply chain disruption. So I think this opens up huge potential market for our Indian exporters.
3: And that's been a BRICS declaration also.
2: Yeah, right.
3: In more news, government has introduced an exemption from the requirement of registration cum membership certificate, RCMC, or certificate of registration for small value export consignments up to 3 lakh rupees. The Ministry of Commerce and Industry said that the measure is aimed at reducing the compliance burden for new and small exporters and facilitating exports through postal, courier, and other emerging channels. The ministry said that the measure provides MSMEs, artisans, small businesses, and first-time exporters with a simpler entry point into international markets by removing the requirement to obtain an RCMC. It added that the move will help emerging exporters to test overseas markets and establish an export track record with lower initial compliance requirements. Ease of doing business, once again?
2: Absolutely. I think the number of steps that we have taken, I think this is one more step in that direction.
1: अन्य खबरों में, भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने सोने और चांदी की वस्तुओं के लिए हॉलमार्किंग शुल्क में बदलाव किया है। सोने के लिए हॉलमार्किंग शुल्क 45 रुपए से बढ़ाकर 75 रुपए प्रति वस्तु कर दी गई है, जबकि चांदी के शुल्क में कोई बदलाव नहीं हुआ है। बदले हुए शुल्क तत्काल प्रभाव से लागू किए जाएंगे।
3: Government has clarified that there will be no charges at all for person-to-person UPI transactions, irrespective of the amount transferred. Finance Ministry said that the payments to merchants up to 2,000 rupees, along with transactions covered under the Zero Merchant Discount Rate MDR framework for small merchants, will also remain free. The Ministry said that consequently, approximately 96% of all person-to-merchant transactions will remain unaffected. It said that MDR will apply only to specified merchant transactions above 2,000 rupees. The ministry said that MDR is neither a tax nor a charge collected by the government or National Payments Corporation of India. It is distributed among payment ecosystem participants, including banks and payment application providers, to support the operation and continued expansion of the UPI ecosystem.
1: आगे बढ़ते हैं। एशियाई शेयर बाजारों में आज दक्षिण कोरिया का कॉस्पी लगभग 1.5% बढ़ा, जबकि जापान के निके सूचकांक में 0.7% की वृद्धि हुई। सिद्धार्थ, ये क्या इंगित करता है इस समय जिस तरीके की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसको देखते हुए?
2: नहीं, देखिए, जहां तक जापान की बात है, जापान में मुझे लगता है पहली बार अभी तक डिफ्लेशन था, तो पहली बार अब इन्फ्लेशन की वजह से मुझे लगता है जापानीज मार्केट्स में हमको इतना पॉजिटिव वो दिख रहा है। लेकिन हालांकि वहां पे अभी भी जो उनका पब्लिक एक्सपेंडिचर है, जो गवर्नमेंट का अभी भी जो एक्सपेंडिचर है, वो काफी हाई है। तो अभी मुझे लगता है अर्ली डेज, बट यस, देयर इज गुड न्यूज़ फॉर देम इन टर्म्स ऑफ AI, ऑटोमेशन, इन इस तरह। और जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो रिफॉर्म्स वहां पे किए हैं, तो कंपनियों के रिजल्ट्स भी बेहतर आ रहे हैं। तो इस वजह से कहीं ना कहीं हमें वहां की मार्केट्स में एक जो है अपटेक दिख रहा है। साथ साथ जो कॉस्पी की आपने बात कही है, वो मतलब आप सबको पता है क्योंकि दो ही बड़े कारण है उसके, आर्टिफिशियल

0: 1.1% की बढ़त के साथ 231,337 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। संक्षिप्त में मैं आपसे टिप्पणी चाहूंगी सोने और चांदी के भाव पर।
1: मुझे लगता है प्राची अभी गोल्ड और सिल्वर मुझे लगता है दोनों में ही हम रेंज बाउंड एक्टिविटी देख रहे हैं और मुझे आने वाले समय में ऐसा कोई स्पर्ट नहीं दिखाई दे रहा अंटिल अनलेस मतलब ग्लोबली कोई ऐसी बड़ी क्राइसिस जो अभी है उसमें और स्थिति खराब हो जाए तो शायद गोल्ड। हालांकि ये मैं जरूर मानता हूं कि प्राइसेस बहुत ज्यादा मॉडरेट नहीं करेंगे क्योंकि सेंट्रल बैंक्स भी बहुत बड़े पैमाने पे अभी भी गोल्ड खरीद रहे हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ कार्यक्रम में भाग लेने के लिए।
1: धन्यवाद आप दोनों का।
2: And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic indices rise, Sensex gains over 300 points. Nifty settles at 23,218. New Zealand passes legislation to implement FTA with India and global crude oil prices decline. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

और एक डायरेक्टर के साथ काम काफी कर चुका हूँ जैसे नासिर हुसैन, वो भी ऐसा करते थे कि गाना बनाने के टाइम में मेरे साथ शॉर्ट डिविजन करते थे। कभी कभी वो क्या करते थे कि तुम गाना बनाओ, मैं शॉर्ट डिविजन करूँगा। तो कभी कभी मुझे बोलते थे कि पहले शॉर्ट डिविजन करके देता हूँ, तो पूरा शॉर्ट डिविजन बताते थे और उस शॉर्ट डिविजन से गाना निकलता था।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सिर्फ और सिर्फ 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम है गीत मेरे मन में, तो और मैं हूं आपके साथ रितिका।

तो दोस्तों गीत मेरे मनमीत में आज बस इतना ही। अपनी दोस्त रितिका को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरती प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के तकनीकी भविष्य को आकार देने में सरकार और सेमीकंडक्टर उद्योग के बीच घनिष्ठ सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रधानमंत्री ने प्रतिभा, प्रौद्योगिकी अपनाने और बुनियादी ढांचे में भारत की मजबूत नींव का उल्लेख किया। उन्होंने कौशल विकास, नवाचार और AI तथा क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में उद्योग की अधिक भागीदारी का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेमीकंडक्टर तंत्र अब व्यापक स्तर और अवसरों के चरण में पहुंच रहा है। बैठक में प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली के यशोभूमि में 5वें सेमीकॉन इंडिया का शुभारंभ करेंगे। 3 दिन के इस सम्मेलन में सहयोग बढ़ाने, नवाचार को गति, विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती देने तथा निवेश आकर्षित करने का अवसर मिलेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के अंतर्गत अनिवार्य दायरे में शामिल होने को वेतन सीमा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रतिमाह कर दी है। संशोधित वेतन सीमा आज विश्वकर्मा जयंती से प्रभावित हो जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा काफी बढ़ जाएगा।
1: आज कैबिनेट में हमारे देश भर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। प्रोविडेंट फंड का जो नियम है, उस नियम में अब तक 15,000 रुपीज की सीलिंग रहा करती थी। ये सीलिंग 2014 में तय की गई थी, इसको बढ़ाकर 25,000 रुपए पर मंथ सैलरी पे लेके आ गए। इससे करीब 51 लाख एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा।
0: सरकार ने पाकिस्तान के शहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी गुट घोषित किया है। ये गुट युवाओं और छोटे अपराधियों को आतंकवाद के लिए उकसाने के अलावा सीमा पार हथियारों, विस्फोटकों और नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल है। गृह मंत्रालय ने इसके बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। इस गुट ने भारत की लोकतांत्रिक संरचना और सांप्रदायिक सद्भाव को निशाना बनाते हुए नफरत फैलाने वाले डिजिटल सामग्री भी प्रकाशित की है। आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति के अनुसार यह कार्रवाई की गई है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि इससे 1,40,00,000,000 भारतीय उपभोक्ताओं तक पहुंच आसान होगी और न्यूजीलैंड में रोजगार तथा आय में वृद्धि होगी। तमिलनाडु में AIADMK विधायकों मरगाथम कुमार वेल और सत्यभामा के इस्तीफे के कारण रिक्त हुए आरक्षित मदुरांतकम और धारापुरम विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनावों के लिए कल नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन था। मतदान 6 अक्टूबर को और मतगणना 9 अक्टूबर को होगी। नामांकन पत्रों की जाँच आज होगी, जबकि 19 तारीख तक नाम वापिस लिए जा सकते हैं। भारतीय तटरक्षक बल का 43वां कमांडर्स कॉन्फ्रेंस आज से नई दिल्ली में शुरू होगा। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ इस 3 दिवसीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह सम्मेलन मौजूदा और उभरती समुद्री सुरक्षा चुनौतियों, परिचालन तत्परता और संसाधन तैनाती, क्षमता वर्धन और बल के आधुनिकीकरण की योजना तथा राष्ट्रीय समुद्री रणनीति के अनुरूप संगठनात्मक प्राथमिकताओं पर केंद्रित होगा। दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि यह पुरस्कार 22 सितंबर को गुजरात के केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रदान किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव और राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि यह पुरस्कार देश के महानतम कलाकार के लिए उपयुक्त सम्मान है। सरकार ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का तत्काल प्रभाव से 3 साल की अवधि के लिए पुनर्गठन किया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि पुनर्गठित बोर्ड में विनोद अनुपम, मनोज जोशी, हंसराज हंस, प्रीति जिंटा, पंकज त्रिपाठी, रिकी केज, सुनील शेट्टी, रूपा गांगुली और प्रियदर्शन सहित 18 सदस्य शामिल हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

समय हुआ है 12:11 और 2 सेकंड। मैं हूं अंजू आपके साथ, कार्यक्रम लेकर आई हूं निशिगंधा और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। और इस कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह कुछ अल्फाज लिए। मोहब्बत पर किसी का जोर नहीं चलता, मोहब्बत पर किसी का जोर नहीं चलता, ये वो परिंदा है जो बस अपनी मर्जी से ही उड़ता है।

धड़कने तो चलती थी पर दिल में कोई हलचल नहीं थी। धड़कने तो चलती थी पर दिल में कोई हलचल नहीं थी। हम तो सिर्फ जी रहे थे क्योंकि जिंदगी नहीं थी कुछ भी तेरे बगैर।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

मेरी नजरों से देखोगे तो ये कायनात हसीन लगेगी। मेरी नजरों से देखोगे तो ये कायनात हसीन लगेगी, क्योंकि जहां तुम ना हो वो दुनिया तो हमें भी वीरान ही लगेगी।

0: महलों की ख्वाहिश नहीं है इस दीवाने दिल को, महलों की ख्वाहिश नहीं है इस दीवाने दिल को, क्योंकि जहां तुम साथ हो सपनों का महल तो वहीं बन जाता है।
1: एक महल हो

हर ख्वाब अधूरा है अगर उसमें तुम नहीं हो, हर ख्वाब अधूरा है अगर उसमें तुम नहीं हो, और जिसमें तुम हो उस ख्वाब से हम कभी जागना नहीं चाहेंगे।

क्या करूं कि बंद आंखों में भी बस तेरा ही चेहरा नजर आता है। क्या करूं कि बस बंद आंखों में भी बस तेरा ही चेहरा नजर आता है। सोचूं तो तू ख्याल में है और सोऊं तो तू मेरे ख्वाब में है।

दोस्तों अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार और ये कार्यक्रम का आखिरी गीत था। आपसे मुलाकात होगी 1:10 पर। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरती प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के तकनीकी भविष्य को आकार देने में सरकार और सेमीकंडक्टर उद्योग के बीच घनिष्ठ सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रधानमंत्री ने प्रतिभा प्रौद्योगिकी अपनाने और बुनियादी ढांचे में भारत की मजबूत नींव का उल्लेख किया। उन्होंने कौशल विकास, नवाचार और एआई तथा क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में उद्योग की अधिक भागीदारी का आह्वान किया। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली के यशोभूमि में 5वें सेमिकॉन इंडिया का शुभारंभ करेंगे। 3 दिन के इस सम्मेलन में सहयोग बढ़ाने, नवाचार को गति, विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती देने तथा निवेश आकर्षित करने का अवसर मिलेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य दायरे में शामिल होने को वेतन सीमा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रतिमाह कर दी है। संशोधित वेतन सीमा आज विश्वकर्मा जयंती से प्रभावी हो जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा काफी बढ़ जाएगा।
1: आज कैबिनेट में हमारे देश भर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। प्रोविडेंट फंड का जो नियम है, उस नियम में अब तक 15,000 रुपीज की सीलिंग रहा करती थी। ये सीलिंग 2014 में तय की गई थी, इसको बढ़ाकर 25,000 रुपए पर मंथ सैलरी पे लेके आ गए। इससे करीब 51 लाख एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा।
0: सरकार ने पाकिस्तान के शहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी गुट घोषित किया है। ये गुट युवाओं और छोटे अपराधियों को आतंकवाद के लिए उकसाने के अलावा सीमा पार हथियारों, विस्फोटकों और नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल है। गृह मंत्रालय ने इसके बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। इस गुट ने भारत की लोकतांत्रिक संरचना और सांप्रदायिक सद्भाव को निशाना बनाते हुए नफरत फैलाने वाली डिजिटल सामग्री भी प्रकाशित की है। आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति के अनुसार यह कार्रवाई की गई है। भारत ने तथाकथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज करते हुए कहा कि पाकिस्तान को उसके अवैध और बलपूर्वक कब्जे वाले भारतीय भूभाग से संबंधित किसी भी व्यवस्था में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस मामले में भारत का स्पष्ट और निरंतर मानना है कि पाकिस्तान और चीन के बीच कोई सीमा नहीं है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत बिना किसी कानूनी आधार वाले पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को पूरी तरीके से खारिज करता है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न और अविच्छेद्य हिस्से रहे हैं और हमेशा रहेंगे। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि इससे 1,40,000,000,000 भारतीय उपभोक्ताओं तक पहुंच आसान होगी और न्यूजीलैंड में रोजगार तथा आय में वृद्धि होगी। इस समझौते से न्यूजीलैंड से भारत को होने वाले 27% निर्यात पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। तमिलनाडु में AIADMK विधायकों मारगाथम कुमारवेल और सत्यभामा के इस्तीफे के कारण रिक्त हुए आरक्षित मधुरांतकम और धारापुरम विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनावों के लिए कल नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन था। मतदान 6 अक्टूबर को और मतगणना 9 अक्टूबर को होगी। नामांकन पत्रों की जांच आज होगी, जबकि 19 तारीख तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। भारतीय तटरक्षक बल का 43वां कमांडर्स कॉन्फ्रेंस आज से नई दिल्ली में शुरू होगा। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ इस 3 दिवसीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि यह पुरस्कार 22 सितंबर को गुजरात के केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त स्मृति चिन्हों और उपहारों की ई नीलामी आज से शुरू होगी। नई दिल्ली में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि इस वर्ष नीलामी के लिए लगभग 1500 वस्तुएं रखी गई हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi has emphasized the importance of close collaboration between the government and the semiconductor industry in shaping India's technology future. Mr. Modi stated this while chairing the semiconductor roundtable with leading global CEOs in New Delhi. The Prime Minister has called for greater industry participation in skilling innovation and emerging technologies such as artificial intelligence, AI and quantum computing. The roundtable was held ahead of the inauguration of the fifth edition of Semicon India by Prime Minister Modi in New Delhi today. The Union Cabinet has approved the increase in the wage ceiling for mandatory coverage under the Employees Provident Fund Organization from 15,000 rupees to 25,000 rupees per month. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw made the announcement while addressing the media after the Cabinet meeting in New Delhi. He said the decision is expected to benefit over 51 lakh additional. Mr. Vaishnaw said the revised wage ceiling will come into effect from today on the occasion of Vishwakarma Jayanti. India has rejected the so-called Pakistan-China Boundary Joint Commission, saying that Pakistan has no locus standi to enter into arrangements concerning Indian territory under its illegal and forcible occupation. Responding to a media query, spokesperson of the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, said

दोस्तों आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर. अंजू है एक बार फिर से आपके साथ कार्यक्रम गीत सुहाने लेकर. एक बार फिर से आप सभी को मेरा नमस्कार. यकीन मानो तुम सामने आते हो तो हम पलकें झपकना भी भूल जाते हैं, और कहीं तुम ओझल ना हो जाओ इसलिए तुम्हें इन आंखों में ही छुपा लेते हैं.

रात भर जागते हैं इसी कश्मकश में ग़ालिब, रात भर जागते हैं इसी कश्मकश में ग़ालिब, कि आज हमारे सपनों में कौन आने वाला है।

जमाने भर के सारे वाके भूल बैठे हैं हम, जमाने भर के सारे वाके भूल बैठे हैं हम, बस बस वो एक तेरा मिलना और मुस्कुराना याद है हमें।

थक चुकी हैं निगाहें सुने रास्तों को तकते तकते, थक चुकी हैं निगाहें सुने रास्तों को तकते तकते, जो मुड़कर मेरी बाहों में आए वो राह दिखा मेरे महबूब को।

नीम से कहो कि अब हमसे कोई रिश्ता ना रखे, नीम से कहो कि अब हमसे कोई रिश्ता ना रखे, क्योंकि हम सोना भी चाहें तो उनकी याद हमें सोने ही नहीं देती।

होश में रहना अब गवारा नहीं इस दीवाने दिल को, होश में रहना अब गवारा नहीं इस दीवाने दिल को, क्योंकि जब से तेरी मदहोश आंखों को देखा है तब से हम जीना ही भूले।

लोग पूछते हैं मुझसे मेरी बेचैनी का सबब, लोग पूछते हैं मुझसे मेरी इस बेचैनी का सबब, अब कैसे समझाऊं कि तुम्हारे बिना ये दिल कहीं लगता ही नहीं।

दूसरे कार्यक्रम का आखिरी गीत है, अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। कहीं जाएगा मत, जल्द मिलेंगे। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली के यशोभूमि में पांचवें सेमिकॉन इंडिया का शुभारंभ करेंगे। तीन दिन के सम्मेलन में सहयोग बढ़ाने, नवाचार को गति, विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती देने तथा निवेश आकर्षित करने का अवसर मिलेगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरती प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के तकनीकी भविष्य को आकार देने में सरकार और सेमीकंडक्टर उद्योग के बीच घनिष्ठ सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रधानमंत्री ने प्रतिभा प्रौद्योगिकी अपनाने और बुनियादी ढांचे में भारत की मजबूत नींव का उल्लेख किया। बैठक में प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया। भारत ने तथाकथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज करते हुए कहा कि पाकिस्तान को उसके अवैध और बलपूर्वक कब्जे वाले भारतीय भूभाग से संबंधित किसी भी व्यवस्था में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस मामले में भारत का स्पष्ट और निरंतर मानना है कि पाकिस्तान और चीन के बीच कोई सीमा नहीं है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत बिना किसी कानूनी आधार वाले पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को पूरी तरीके से खारिज करता है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न और अविच्छेद हिस्से रहे हैं और हमेशा रहेंगे। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की जगदलपुर स्थित विशेष अदालत ने झीरम घाटी कांड के सभी 10 दोषियों को कल फांसी की सजा सुनाई। वर्ष 2013 में छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में झीरम घाटी के माओवादियों के हमले में कांग्रेस के अनेक वरिष्ठ नेताओं सहित 27 लोगों की मौत हो गई थी और 35 अन्य घायल हुए थे। NIA ने इस मामले में 11 माओवादियों को गिरफ्तार किया था। एक आरोपी की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कल से 32वां अखिल भारतीय राज्य निर्वाचन आयुक्त सम्मेलन शुरू हो गया। दो दिन के इस सम्मेलन का उद्घाटन राज्यपाल रामेन डेका ने किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि स्थानीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों की निर्वाचन प्रक्रिया को अधिक सशक्त, पारदर्शी, समावेशी और तकनीक सक्षम बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती में स्थानीय स्वशासी संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने आज स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 का शुभारंभ किया। अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत, विकसित भारत।

0: श्री पाटिल ने कहा कि इस वर्ष अभियान का उद्देश्य स्वच्छता के लिए लोगों की भागीदारी और सहभागिता को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि देश में स्वच्छता के क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए हैं। इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में दिल्ली को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष स्थान मिला है। दिल्ली के बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, चंडीगढ़ और गोवा का स्थान है। नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ना 2047 तक विकसित भारत की महत्वाकांक्षा के लिए एक आर्थिक, पर्यावरणीय और रणनीतिक अनिवार्यता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे हैदराबाद में आयोजित हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। यह कार्यक्रम हैदराबाद के परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना आज 3 वर्ष पूरे कर लेगी। इस योजना के अंतर्गत 30 लाख लाभार्थियों के पंजीकरण किए जाने का लक्ष्य पूरा हो चुका है। योजना का उद्देश्य 18 चिन्हित व्यवसायों में लगे पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को संपूर्ण सहायता प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त स्मृति चिन्हों और उपहारों की ई नीलामी आज से शुरू होगी। नई दिल्ली में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि इस वर्ष नीलामी के लिए लगभग 1500 वस्तुएं रखी गई हैं। श्री शेखावत ने लोगों से ई नीलामी में शामिल होने का आग्रह किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। Prime Minister Narendra Modi will inaugurate Semicon India 2026 today at Yashobhoomi in New Delhi. The Prime Minister will also address the gathering on the occasion. A 3-day conference and exhibition is being organized on the theme Silicon to Systems, Building the Ecosystem. It will bring together global and Indian companies, policy makers, investors, researchers, startups, academic institutions and students from across the semiconductor and electronics value chain. Ahead of the inauguration, the Prime Minister chaired a semiconductor roundtable with the leading global CEOs in New Delhi yesterday. Mr. Modi stressed the need for close cooperation between the government and industry to strengthen India's semiconductor sector. He also called for greater industry participation in skill development, innovation, artificial intelligence and quantum computing. The Union Cabinet has approved the increase in the wage ceiling for mandatory coverage under the Employees Provident Fund organization from 15,000 rupees to 25,000 rupees per month. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw made the announcement while addressing the media after the Cabinet meeting in New Delhi. Mr. Vaishnaw said the revised wage ceiling will come into effect from today on the occasion of Vishwakarma Jayanti.
2: 25,000 rupees per month salary will be the new ceiling for PF deductions. Isse kareeb 51 lakh employees ko iska benefit milega, jo ki 15 to 25 wale band mein the, they will start getting covered in the new PF rules. Bharat Sarkar ka ispe estimated government expenditure rahega about 11,339 crore rupees every year.
1: India has rejected the so-called Pakistan-China Boundary Joint Commission, saying that Pakistan has no locus standi to enter into arrangements concerning Indian territory under its illegal and forcible occupation. Responding to media queries, spokesperson of the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, said the ministry has seen reports in their regard and India's position on this matter is clear and consistent. He said there is no

दोस्तों, समय हुआ है 2:11 और 3 सेकंड। ये समय है कार्यक्रम रात सुरमई का। मैं अंजू एक बार फिर से करती हूँ आप सभी का स्वागत। आप सभी को मेरा नमस्कार और शुरुआत बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ।

अल्फाज की ज़रूरत ही कहाँ होती है इस मोहब्बत में, अल्फाज की ज़रूरत ही कहाँ होती है इस मोहब्बत में, जब होठ चुप हैं तो ये दिल दिल को सुन ही लेता है।

लोग तो खो जाते हैं मंजिल की तलाश में अक्सर, लोग तो खो जाते हैं मंजिल की तलाश में अक्सर, अब हमारी तो मंजिल भी तुम ही हो, तो फिर जाना कहाँ।

दोस्तों, कार्यक्रम चल रहा है रात सुरमई अंजू है आपके साथ और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़।

आकर रोज तड़पाना अच्छा नहीं, ख्यालों में आकर यू रोज तड़पाना अच्छा नहीं, याद आने से बेहतर है कि तुम आ ही जाया करो।

नजरें तो रोज हजारों चेहरों को देखती है, नजरें तो रोज हजारों चेहरों को देखती हैं, पर ये दिल दिल गवाही देता है कि हम सिर्फ तुम्हें ही चाहते हैं।

दोस्तों अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। आगे का कार्यक्रम लेकर आएंगे भारती, हमराही में रहेंगे आपके साथ। मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार, शुभ रात्रि।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली के यशोभूमि में पांचवें सेमिकॉन इंडिया का शुभारंभ करेंगे। तीन दिन के इस सम्मेलन में सहयोग बढ़ाने, नवाचार को गति, विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती देने तथा निवेश आकर्षित करने का अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरती प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के तकनीकी भविष्य को आकार देने में सरकार और सेमीकंडक्टर उद्योग के बीच घनिष्ठ सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रधानमंत्री ने प्रतिभा, प्रौद्योगिकी अपनाने और बुनियादी ढांचे में भारत की मजबूत नींव का उल्लेख किया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कल से 32वां अखिल भारतीय राज्य निर्वाचन आयुक्त सम्मेलन शुरू हो गया। दो दिन के इस सम्मेलन का उद्घाटन राज्यपाल रामेन डेका ने किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती में स्थानीय स्वशासी संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। तमिलनाडु में AIADMK विधायकों मारगाथम कुमार वेल और सत्यबामा के इस्तीफे के कारण रिक्त हुए आरक्षित मदुरांतकम और धारापुरम विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनावों के लिए कल नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन था। मतदान 6 अक्टूबर को और मतगणना 9 अक्टूबर को होगी। नामांकन पत्रों की जाँच आज होगी, जबकि 19 तारीख तक नाम वापिस लिए जा सकते हैं। भारत ने तथाकथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज करते हुए कहा कि पाकिस्तान को उसके अवैध और बलपूर्वक कब्जे वाले भारतीय भूभाग से संबंधित किसी भी व्यवस्था में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस मामले में भारत का स्पष्ट और निरंतर मानना है कि पाकिस्तान और चीन के बीच कोई सीमा नहीं है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न और अविच्छेद्य हिस्से रहे हैं और हमेशा रहेंगे। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 का शुभारंभ किया। अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत, विकसित भारत।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और समय हो गया है प्रोग्राम हमराही का। मैं हूं आज आपके साथ आपकी दोस्त भारती। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम हमराही की और आप सबका करती हूं स्वागत आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर। तो शुरुआत करते हैं कार्यक्रम के इस प्यारे से गीत के साथ।

रात अभी बाकी है, कुछ अनकहीं बातें अभी बाकी हैं। कभी कभी शब्द कम पड़ जाते हैं और खामोशियां दिल की सारी कहानी कह जाती हैं।

किसे नहीं मरने दोगी? ये क्या हो गया तुम्हें है? तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों? किसकी मौत के बारे में सोच रही थी? मेरी? अरे मेरी जिंदगी और मौत तो अब तुम्हारे साथ है, और प्यार करने वाले मौत से डरा नहीं करते।

प्यार अक्सर दस्तक देकर नहीं आता बस पता ही नहीं चलता कि कब किसी की मुस्कान दिल में उतर गई और कब एक अनजान रिश्ता अपना सा लगने लगा

का रिश्ता कोई हिसाब नहीं मांगता जहां मन को अपनापन मिल जाए वहीं से जिंदगी की राह थोड़ी और खूबसूरत लगने लगती है

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर

जब दिल में किसी याद का उजाला हो तो बाहर के चिराग भी फीके लगने लगते हैं। कभी एक याद ही पूरी रात को रोशन कर देती है और अभी एक एहसास सारी खामोशी को अपना बना लेता है।

रिश्तों की खूबसूरती बड़े वादों में नहीं होती, बल्कि उन छोटी छोटी बातों में होती है जिन्हें याद करके चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान आ जाए। और इसी के साथ मैं आपसे ले रही हूँ अनुमति और छोड़कर जा रही हूँ बहुत ही प्यारे गीत के साथ। समय कह रहा है कि अब आपसे विदा ले ली जाए, लेकिन जल्द हाजिर होंगी 4:10 पर लेकर प्रोग्राम अरुणिमा। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। गीत के बाद आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली के यशोभूमि में पांचवें सेमिकॉन इंडिया का शुभारंभ करेंगे। तीन दिन के इस सम्मेलन में सहयोग बढ़ाने, नवाचार को गति, विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती देने तथा निवेश आकर्षित करने का अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरती प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के तकनीकी भविष्य को आकार देने में सरकार और सेमीकंडक्टर उद्योग के बीच घनिष्ठ सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रधानमंत्री ने प्रतिभा, प्रौद्योगिकी अपनाने और बुनियादी ढांचे में भारत की मजबूत नींव का उल्लेख किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए प्रति माह कर दिया है। संशोधित वेतन सीमा कल विश्वकर्मा जयंती से प्रभावी हो जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा काफी बढ़ जाएगा।
1: आज कैबिनेट में हमारे देश भर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। प्रोविडेंट फंड का जो नियम है, उस नियम में अब तक 15,000 रुपीज की सीलिंग रहा करती थी। ये सीलिंग 2014 में तय की गई थी, इसको बढ़ाकर 25,000 रुपए पर मंथ सैलरी पे लेके आ गए। इससे करीब 51 लाख एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा।
0: भारत ने सऊदी अरब के मक्का के नजदीक ड्रोन हमले की घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत सऊदी अरब पर हमलों में लोगों और बुनियादी ढांचे को खतरे में डालने वाली कार्रवाइयों की कड़ी निंदा करता है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली की उम्मीद करता है। भारत ने तथाकथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज करते हुए कहा कि पाकिस्तान को उसके अवैध और बलपूर्वक कब्जे वाले भारतीय भूभाग से संबंधित किसी भी व्यवस्था में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस मामले में भारत का स्पष्ट और निरंतर मानना है कि पाकिस्तान और चीन के बीच कोई सीमा नहीं है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न और अविच्छेद्य हिस्से रहे हैं और हमेशा रहेंगे। तमिलनाडु में AIADMK विधायकों मारगाथम कुमार वेल और सत्यभामा के इस्तीफे के कारण रिक्त हुए आरक्षित मदुरांतकम और धारापुरम विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनावों के लिए कल नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन था। मतदान 6 अक्टूबर को और मतगणना 9 अक्टूबर को होगी। नामांकन पत्रों की जाँच आज होगी, जबकि 19 तारीख तक नाम वापिस लिए जा सकते हैं। नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले आज से शनिवार तक भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे भारत के वरिष्ठ नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। यात्रा के दौरान 26 अगस्त को आई विनाशकारी बाढ़ के बाद पुनर्निर्माण के लिए भारत से सहायता लेने पर मुख्य रूप से चर्चा होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन आज तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे हैदराबाद में आयोजित हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। यह कार्यक्रम हैदराबाद के परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त स्मृति चिन्हों और उपहारों की ई नीलामी आज से शुरू होगी। नई दिल्ली में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि इस वर्ष नीलामी के लिए लगभग 1500 वस्तुएं रखी गई हैं। श्री शेखावत ने लोगों से ई नीलामी में शामिल होने का आग्रह किया। दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि यह पुरस्कार 22 सितंबर को गुजरात के केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रदान किया जाएगा। मौसम विभाग ने आज बिहार, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, केरलम, माहे, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi will inaugurate Semicon India 2026 today at Yashobhoomi in New Delhi. The Prime Minister will also address the gathering on the occasion. The three-day conference and exhibition is being organized on the theme Silicon to Synth Systems, Building the Ecosystem. It will bring together global and Indian companies, policy makers, investors, researchers, startups, academic institutions and students from across the semiconductor and electronics value chain. Ahead of the inauguration, the Prime Minister chaired a semiconductor roundtable with the leading global CEOs in New Delhi yesterday. Mr. Modi stressed the need for close cooperation between the government and industry to strengthen India's semiconductor sector. He also called for greater industry participation in skill development, innovation, artificial intelligence and quantum computing. India has rejected the so-called Pakistan-China Boundary Joint Commission, saying that Pakistan has no locus standi to enter into arrangements concerning Indian territory under its illegal and forcible occupation. Responding to media queries, spokesperson of the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, said, "The ministry has seen reports in this regard and India's position on this matter is clear and consistent." He said there is no boundary between Pakistan and China. Mr. Jaiswal said, "New Delhi rejects the Pakistan-China Boundary Joint Commission, which is without any legal basis." BJP will run a month-long nationwide Seva Sankalp Abhiyan from today to mark Prime Minister Narendra Modi's birthday, with a focus on highlighting his commitment to public service and encouraging people, particularly the youth, to undertake acts of service. The campaign will also mark 25 years of Mr. Modi taking oath as the Chief Minister of Gujarat on October 7, 2001. The Prime Minister's birthday will be observed as Seva Divas, with blood donation camps will be organised across the country today. An Ashirvad Ka Diya program will also be held this evening, with families lighting lamps as a gesture of gratitude for his 25 years of public service. An e-auction of mementos and gifts received by Prime Minister Narendra Modi will commence from today. Addressing the media in New Delhi, Minister of Culture and Tourism Gajendra Singh Shekhawat said around 1,500 items have been kept for auction this year, including paintings, textiles, statues, antiques and handicraft artworks representing India's diverse cultures, faiths and traditional craftsmanship. A total of 1,498 mementos are being offered in this edition. The Union Cabinet has approved the increase in the wage ceiling for mandatory coverage under the Employees Provident Fund organization from 15,000 rupees to 25,000 rupees per month. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw made the announcement while addressing the media after the Cabinet meeting in New Delhi. Mr. Vaishnaw said the revised wage ceiling will come into effect from today on the occasion of Vishwakarma Jayanti.
1: 25,000 rupees per month salary will be the new ceiling for PF deductions. Isse kareeb 51 lakh employees ko iska benefit milega, jo ki 15 to 25 wale band mein the, they will start getting covered in the new PF rules. Bharat Sarkar ka is pe estimated government expenditure rahega about 11,339 crore rupees every year.
2: PM Vishwakarma scheme will complete 3 years today. The scheme has achieved the milestone of registering 30 lakh beneficiaries under it. The scheme was launched by Prime Minister Narendra Modi in 2023. The objective of the scheme is providing end-to-end support to traditional artisans

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और समय हो गया है प्रोग्राम अरुणिमा का। आप सबका मैं एक बार फिर से स्वागत करती हूँ प्रोग्राम अरुणिमा में। मैं हूँ आज आपके साथ आपकी दोस्त भारती। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम अरुणिमा की गीत, बहुत प्यारे से गीत के साथ। गीत है फिल्म बाप बेटी से, लता मंगेशकर की आवाज़ में, संगीतकार मदन मोहन।

आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं अगला गीत फिल्म विधाता से। गीत को अपनी आवाज से सजाया है सुरेश वाटकर और अनवर ने। संगीतकार कल्याण जी आनंद जी, गीतकार आनंद बख्शी।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और प्रोग्राम है अरुणिमा। आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं अगला गीत फिल्म धर्म कांटा से मोहम्मद रफी और भूपेंद्र की आवाज में, संगीतकार नौशाद, गीतकार मजरू सुल्तानपुरी।

और प्रोग्राम अरुणिमा की अंतिम प्रस्तुति सुनते हैं फिल्म प्रेम धर्म से लता मंगेशकर की आवाज में, और ये कार्यक्रम का आखिरी गीत है। मैं आपसे ले रही हूँ अनुमति, इस गीत के साथ आपको छोड़ के जा रही हूँ। जल्द मुलाकात होगी यानी 5:10 पर फिर से हाजिर होंगी लेकर प्रोग्राम भूर सुहानी। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। गीत के बाद आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में पांचवें सेमिकॉन इंडिया का शुभारंभ करेंगे। तीन दिन के सम्मेलन में सहयोग बढ़ाने, नवाचार को गति, विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती देने तथा निवेश आकर्षित करने का अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने उभरती प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के तकनीकी भविष्य को आकार देने में सरकार और सेमीकंडक्टर उद्योग के बीच घनिष्ठ सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रधानमंत्री ने प्रतिभा, प्रौद्योगिकी अपनाने और बुनियादी ढांचे में भारत की मजबूत नींव का उल्लेख किया। बैठक में प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया। भारत ने सऊदी अरब के मक्का के नजदीक ड्रोन हमले की घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत सऊदी अरब पर हमलों में लोगों और बुनियादी ढांचे को खतरे में डालने वाली कार्रवाइयों की कड़ी निंदा करता है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली की उम्मीद करता है। भारत ने तथाकथित पाकिस्तान चीना सीमा संयुक्त आयोग को खारिज करते हुए कहा कि पाकिस्तान को उसके अवैध और बलपूर्वक कब्जे वाले भारतीय भूभाग के से संबंधित किसी भी व्यवस्था में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस मामले में भारत का स्पष्ट और निरंतर मानना है कि पाकिस्तान और चीन के बीच कोई सीमा नहीं है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न और अविच्छेद्य हिस्सा रहे हैं और हमेशा रहेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह कर दिया है। संशोधित वेतन सीमा आज विश्वकर्मा जयंती से प्रभावी हो जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा काफी बढ़ जाएगा।
1: आज कैबिनेट में हमारे देश भर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। प्रोविडेंट फंड का जो नियम है, उस नियम में अब तक 15,000 रुपीस की सीलिंग रहा करती थी। ये सीलिंग 2014 में तय की गई थी, इसको बढ़ाकर 25,000 रुपए पर मंथ सैलरी पे लेके आ गए। इससे करीब 51 लाख एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा।
0: तमिलनाडु में AIADMK विधायकों मरगाथम कुमारवेल और सत्यभामा के इस्तीफे के कारण रिक्त हुए आरक्षित मंदुरांतकम और धारापुरम विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनावों के लिए कल नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन था। मतदान 6 अक्टूबर को और मतगणना 9 अक्टूबर को होगी। नामांकन पत्रों की जाँच आज होगी, जबकि 19 तारीख तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की जगदलपुर स्थित विशेष अदालत ने झीरम घाटी कांड के सभी 10 दोषियों को कल फांसी की सजा सुनाई। वर्ष 2013 में छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में झीरम घाटी में माओवादियों के हमले में कांग्रेस के अनेक वरिष्ठ नेताओं सहित 27 लोगों की मौत हो गई थी और 35 अन्य घायल हुए थे। जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 का शुभारंभ किया। अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत विकसित भारत। श्री पाटिल ने कहा कि इस वर्ष अभियान का उद्देश्य स्वच्छता के लिए लोगों की भागीदारी और सहभागिता को बढ़ावा देना है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे हैदराबाद में आयोजित हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। ये कार्यक्रम हैदराबाद के परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले आज से शनिवार तक भारत की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे भारत के वरिष्ठ नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। नेपाल के वित्त सचिव घनश्याम उपाध्याय ने बताया कि श्री वागले वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। मौसम विभाग ने आज बिहार, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, केरलम, माहे, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi will inaugurate Semicon India 2026 today at Yashobhoomi in New Delhi. The Prime Minister will also address the gathering on the occasion. The three-day conference and exhibition is being organized on the theme Silicon to Systems, Building the Ecosystem. It will bring together global and Indian companies, policy makers, investors, researchers, startups, academic institutions and students from across the semiconductor and electronics value chain. Ahead of the inauguration, the Prime Minister chaired a semiconductor roundtable with leading global CEOs in New Delhi yesterday. Mr. Modi stressed the need for close cooperation between the government and industry to strengthen India's semiconductor sector. India has rejected the so-called Pakistan-China Boundary Joint Commission, saying that Pakistan has no local standard to enter into arrangements concerning Indian territory under its illegal and forcible occupation. Responding to media queries, spokesperson of the Ministry of External Affairs, Randeep Jaiswal, reiterated that the entire union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh have been and will always remain integral and inalienable parts of India. India called upon Pakistan to immediately vacate from areas under its illegal and forcible occupation instead of engaging in such theatrics. BJP will run a month-long nationwide Seva Sankalp Abhiyan from today to mark Prime Minister Narendra Modi's birthday, with focus on highlighting his commitment to public service and encouraging people, particularly the youth, to undertake acts of service. The campaign will also mark 25 years of Mr. Modi taking oath as the Chief Minister of Gujarat on October 7, 2001. The Prime Minister's birthday will be observed as Seva Divas today, with blood donation camps organised across the country. An Ashirvad Ka Diya program will also be held this evening, with families lighting lamps as a gesture of gratitude for his 25 years of public service. In Tamil Nadu, today is the last day for filing nominations for the by-elections to be held in Madurantakkam and Dharapuram Assembly constituencies. Polling will be held on the 6th of next month, while the counting of votes will take place on the 9th of next month. The constituencies felt vacant due to the resignations of AIADMK MLAs Maragatham Kumaravel and Satyabhama. Nominations will be scrutinized tomorrow, and the last date for the withdrawal of nominations is the 19th of this month. An e-auction of mementos and gifts received by Prime Minister Narendra Modi will commence from today. Addressing the media in New Delhi, Minister of Culture and Tourism Gajendra Singh Shekhawat said around 1,500 items have been kept for auction this year, including paintings, textiles, statues, antiques and handicraft artworks representing India's diverse cultures, faiths and traditional craftsmanship. A total of 1,498 mementos are being offered in this edition. PM Vishwakarma scheme will complete 3 years today. The scheme has achieved the milestone of registering 30 lakh beneficiaries under it. The scheme was launched by Prime Minister Narendra Modi in 2023. The objective of the scheme is providing end-to-end support to traditional artisans and craftspeople engaged in 18 identified trades. The 43rd edition of the Indian Coast Guard ICG Commanders Conference will begin in New Delhi from today. The Ministry of Defence said that the three-day conference will be chaired by Minister of State for Defence, Sanjay Seth. The Ministry noted that the conference will focus on maritime security challenges, operational readiness, capability enhancement, force modernization, and priorities under India's National Maritime Strategy. Today is Telangana Liberation Day. On this day in 1948, the Hyderabad Princely State merged with the Indian Union. Commemorating this historic event, the central government officially started Liberation Day celebrations in 2022. The celebrations will be held at the Secunderabad Parade Grounds. Vice President C.P. Radhakrishnan will be attending as the chief guest for the main event held today. The India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall in Bihar, Sub-Himalayan West Bengal, Kerala, Tamil Nadu and parts of Northeast India today. In men's cricket, India will face Afghanistan in the third and final T20 international of the series at Arun Jaitley Stadium in Delhi at 7:30 p.m. today. And that is the end of this news bulletin.

एक बार फिर से आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और समय हो गया है प्रोग्राम भोर सुहानी का। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की इस भजन के साथ।

आज अपने दिल के उस रास्ते पर चलें जहां उम्मीद हमारा साथ दे। मंजिल कितनी भी दूर हो, शुरुआत हमेशा एक छोटे से कदम से ही होती है।

प्रकृति हमें हर सुबह एक नया संदेश देती है पेड़ की हर डाली पर नई कोपलें हर फूल में नई मुस्कान और हर किरण में नई ऊर्जा जीवन भी ऐसा ही है हर दिन हमें फिर से खिलने का अवसर देता है

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर. प्रोग्राम है भोर सुहानी. सुबह सिर्फ दिन की शुरुआत नहीं बल्कि नए विचार नए संकल्पों की शुरुआत है. मन में विश्वास हो तो साधारण सी सुबह भी जीवन में उम्मीद की रोशनी भर देती है.